नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम अलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा ये कार्यक्रम मन की बात का विस्तार है।

0: माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में हमारे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात कही है, साथ ही देश को उन्होंने प्रेरणा दी है कि हम आत्मनिर्भर तो हों लेकिन अपनी सेनाओं के बारे में हम और अधिक जानें, उस कार्यप्रणाली को समझें और साथ ही जो हमारे मन में हमारी सेनाओं के लिए सम्मान है, हमारे सशस्त्र बलों के लिए सम्मान है, उसे हम गाढ़ा भी करते जाएं, क्योंकि ये काम आसान तो नहीं है जो हमारे बल, हमारी सेनाएं हमारे लिए करती हैं। हमारे हर पर्व पर एक एहसान हमारे फौजियों का है, वो सीमा पर तैनात हैं, इसलिए हम सीमा के भीतर सुरक्षित हैं और खुश भी हैं। तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है, कैसे होगी, अभी तक हमारी उपलब्धियां क्या हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकता है आपके मन में भी हो। हम इन सभी सवालों के जवाब आपको देंगे। इस समय स्टूडियो में हैं हमारे विशेषज्ञ मेजर जनरल संजय मेस्टन हैं, भारतीय थल सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी। एयर कमोडोर डॉक्टर अश्विंदर सिंह बहल हमारे साथ हैं, वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी। कमांडर विक्रमजीत सिंह हैं, नौसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी। आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।
2: जय हिंद।
0: जय हिंद सर। तो ये सारे सवाल जो आपके मन में होंगे साथियों, आपको इनका जवाब आज मिलेगा, बहुत रोचक तरीके से मिलेगा और बेहद साधारण सी भाषा में मिलेगा जो आप और मैं यानी हम सिविलियन आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन पहले मैं आपको सुनवा रही हूँ मन की बात का वो हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया है, सुनिए।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है, यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: तो सुना आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से हमें प्रेरित किया है। आइए अब अपने सवाल हम सीधे अपने विशेषज्ञों तक लेकर जाते हैं और इनके जवाब जानते हैं। तो संजय मेस्टन सर, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, जब हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये क्यों जरूरी है?
4: पहली बात धन्यवाद और जय हिंद। आपके इंट्रोडक्शन में दो मेरे को पॉइंट्स बड़े अच्छे लगे। एक, आपने बोला कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोला है कि लोगों को फौज के बारे में पता होना चाहिए, और दूसरा आपने ये भी बोला कि हम सिविलियन को पता होना चाहिए। तो एज अ यूनिफॉर्म पर्सन मैं तीनों के बिहाफ पे बोल सकता हूँ कि सिविल और यूनिफॉर्म की बात नहीं है
0: जी,
4: आमूम तौर पे इट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि घर वाले भी हमारे ना वो शब्द नहीं पसंद करते सिविल। एनीवे, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सही बोला है, लोगों को भारतीय सेना के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार देश में तीन पिलर्स होते हैं, खासकर पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, इकोनॉमिक होता है और डिफेंस, ये सबसे जरूरी तीन चीजें हैं और इकोनॉमी और डिफेंस को रिलेटेड है। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ देशवासियों को पता होना चाहिए कि सेना क्या है, अब आत्मनिर्भरता भारत क्यों जरूरी है। देखिए, आपने एक और अच्छा शब्द बोला, बहुत सीधी सरल भाषा में हमें बताना चाहिए और वही मैं सोचता हूँ। देखिए, आम जनता के लिए ये पता होना चाहिए कि एक डिपेंडेंसी होती है, जैसे कोविड के टाइम में आप देखिए
0: जी सर,
4: कि जो भी घर में कोई भी फार्मर था या कोई भी इंसान जिसने घर में सब्जियां उगा रखी थी, सब कुछ उगा रखा था, तो उसको क्या है कि कोविड के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी किसी दुकान पे, एक ही दुकान पे निर्भर है
0: जी,
4: और वो दुकान भी बंद हो जाती

0: सकती, या वो दुकानदार बोलता है मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास स्टोर खत्म हो गया, तो आप सोचिए वो क्या हाल हो जाता है। तो ये छोटा सा मैं घरेलू एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सेना में आत्मनिर्भरता इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम लड़ाई के लिए जाते हैं तो हमारे जवान और ऑफिसर्स वो इक्विपमेंट के साथ लड़ते हैं, और वो इक्विपमेंट में एक कॉन्फिडेंस भरोसा जब आता है, जब हमें पता है ये हमारे द्वारा ही बनाया गया है और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना है, जिस
1: जी
0: टेरेन में हम लोग रहते हैं, जिन पहाड़ों में रहते हैं या जिन कोल्ड कंडीशंस में रहते हैं। तो कहने का मतलब है आत्मनिर्भर भारत बहुत जरूरी है, और आज जो हमारी डिपेंडेंसी है बाहर देशों में ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है, और आज भारत सेल्फ रिलायंट देश है, जो खुद चाहे AI हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे रॉकेट्स हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो। तो कहने का मतलब है ये सारी चीजें एक दिखाता है कि एक कंट्री के अंदर सेल्फ रिलायंस है और एक पावर है। जब हमारे पास सब कुछ है तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, और देश में हमारी सेना को पूरा एक भरोसा होता है कि जो हमें लड़ाई के लिए चाहिए, लॉजिस्टिक से लेकर सब कुछ, वो हमें स्पेयर पार्ट से लेकर सब मिलता रहेगा। तो ये
1: जी
0: है आत्मनिर्भर भारत, और ये पिछले मैं बोलूंगा एक डिकेड के अंदर या 10 साल में इसमें बहुत तीव्रता हमने देखी है। तो
1: जी
0: छोटे से सारांश में ये है आत्मनिर्भर भारत।
1: यानी हमारे पास अपनी बनाई हुई अगर चीजें रहेंगी तो एक तो हमें भरोसा रहेगा कि हमारी जरूरत के हिसाब से है, दूसरा अगर हमें उसके कुछ पार्ट्स चाहिए तो वो हमें समय पर मिलेंगे, हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो डॉक्टर अश्विंदर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम मॉडर्न एज में वॉरफेयर्स जो है उसमें काफी बदलाव देख रहे हैं, तो आप अपने अनुभव से बताएं कि इन दिनों क्या नई तकनीक आ रही है और क्या भारत में वो उपलब्ध है या अभी भी हम उसे इंपोर्ट कर रहे हैं?
2: बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और जो जनरल साहब ने बताया और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं उसको आगे लेके जाना चाहता हूँ।
1: जी
2: 1991 में, 1991 में एक पिक्चर आई थी सौदागर, उसमें एक बड़ा इंटेंस डायलॉग था
1: जी
2: राजकुमार जी का और उनके साथ दिलीप कुमार जी।
1: जी
2: तो उस डायलॉग को वो ऐसे शुरू करते हैं, मैं तुम्हें मारूंगा और जरूर मारूंगा, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, वो गोली भी हमारी होगी, और वक्त भी हमारा होगा।
1: जी
2: ये वो वक्त आ गया है जिसको मैं कहता हूं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इस वक्त के अंदर हम जिस तेजी से इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं
1: जी
2: उसका आने वाले 10 साल में बहुत फायदा होगा। आपने बताया जो युद्ध में टेक्निक्स चेंजेस आए हैं,
1: जी
2: सबसे पहला चेंज आया है कि अब जो युद्ध है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज हो गए हैं, यानी कि आमने सामने भी फौजें नहीं आती हैं, लेकिन
1: जी
2: इतना डिस्ट्रक्शन हो जाता है कि जिससे पूरी इकोनॉमी देश की हिल जाती है।
1: जी
2: आपने रशिया यूक्रेन का युद्ध देखा, आपने ईरान का देखा, आपने देखा कि पहले तो फाइटर जहाज टैंक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अब ड्रोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ना केवल लंबी दूरी से अटैक, लेकिन बहुत सस्ते सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए भी
1: जी
2: उतनी भारी इकोनॉमिक डैमेज, रिफाइनरीज पे आग, गैस के एरियाज, प्रोडक्शन साइट जैसे रास लाफान था उसके ऊपर हमला कतार के अंदर, तो उसका देखिए 3 से 8 साल लगेंगे उसको वापस 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी में आने के लिए।
1: जी
2: कितना बड़ा पूरे विश्व के लिए वो नुकसान है। तो ये जो छोटे छोटे सिस्टम भी हैं ये भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिजल्ट कर सकते हैं। और
1: जी
2: एक और बड़ी अहम चीज आ जाती है आज के जमाने के अंदर, हम जब इंपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट बड़ी महंगी होती है। अब देखिए हम रफाल जहाज लेना चाहते हैं 114, 3.25 लाख करोड़ के हैं ये, 3.25 लाख करोड़ के, कितना हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो
1: जी
2: 40 बिलियन डॉलर के करीब चला जाएगा दूसरे देश में फ्रांस के अंदर। तो अगर हम इंडिजिनाइजेशन बढ़ाते हैं, आपको एक बड़ी अच्छी चीज मैं जनरल साहब ने जो इनकी आर्मी ने की है,
1: जी
2: 91% एम्यूनिशन जो है आज इंडिजिनाइज हो गया है,
1: जी
2: यानी कि भारत के अंदर ही प्रोड्यूस होता है 175 में से 159 डिफरेंट टाइप की एम्यूनिशन वो आज भारत के अंदर ही बनती है।
1: जी
2: और पिछले अगर हम दशक में देखें उससे पहले, तो उस दशक के अंदर हम देखते थे कि हमारी जो इंपोर्ट थी वो 70% थी बाहर से,
1: जी
2: आज 62% हम भारत के अंदर ही प्रोक्योरमेंट जो है भारत के अंदर ही बनाते हैं। 1.54 लाख करोड़ पिछले साल का था डिफेंस प्रोडक्शन, इस साल का है 1.78 लाख करोड़ डिफेंस प्रोडक्शन। हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट था 23,622 करोड़ से बढ़कर 38,424 करोड़, यानी कि 63% बढ़ गया है, और आने वाले समय में 50,000 करोड़ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ना केवल फॉरेन एक्सचेंज को बचा रहे हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज बना भी रहे हैं डिफेंस एक्सपोर्ट से,
1: जी
2: और

0: आज चीज जो इस पे मैं कहना चाहता हूं कि एम्प्लॉयमेंट, सोचिए सैकड़ों आज इंडस्ट्रीज बन गई हैं, एमएसएमईज बन गई हैं, जो गवर्नमेंट की अदिति पॉलिसीज हैं, आईडेक्स पॉलिसीज हैं, या दूसरे जो प्रोत्साहन के मटेरियल हैं, या जो हम को डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपने बताया ना प्रधानमंत्री जी कह रहे थे C295 एयरक्राफ्ट, उससे 15,000 जॉब्स बढ़े हैं, उसी तरीके से ब्रह्मस से 25,000 बढ़े हैं, दूसरे बड़े बड़े एलसीएच प्रोजेक्ट है उससे भी 20,000-25,000 जॉब्स बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 1,10,000 जॉब्स हमको सिर्फ दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं जो यूपी और तमिलनाडु है 2027 तक वहां पे बढ़ेंगे, तो पूरे देश के अंदर एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ला सकते हैं जब हम इंडिजिनाइज करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट को।
1: जी, यानी हम स्वदेशी को बढ़ावा तो दे रहे हैं हर फ्रंट में, लेकिन जब हम रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की बात करते हैं तब भी बहुत सारे फायदे उसके हैं, और डिपेंडिंग इंडस्ट्रीज जो हैं उनको भी लाभ मिलता है, और पूरा एक इकोसिस्टम है जो मजबूत होता है। जी, आपने फिल्म के डायलॉग से शुरुआत की थी, तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि आपकी पसंद का कौन सा गाना हम यहाँ श्रोताओं को सुनवाएं।
0: देखिए बहुत अच्छा

0: हजार बड़े हैं, दूसरे बड़े बड़े एलसीएच प्रोजेक्ट है उससे भी 20,000 25,000 जॉब्स बढ़ रहे हैं। सो
1: जी
0: कहीं ना कहीं जो 1,10,000 जॉब्स हमको सिर्फ दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं जो यूपी और तमिलनाडु है 2027 तक वहां पे बढ़ेंगे, तो
1: जी
0: पूरे देश के अंदर एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ला सकते हैं जब हम इंडिजनाइज करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट को।
1: जी यानी हम स्वदेशी को बढ़ावा तो दे रहे हैं हर फ्रंट में, लेकिन जब हम रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की बात करते हैं तब भी बहुत सारे फायदे उसके हैं, और डिपेंडिंग इंडस्ट्रीज जो हैं उनको भी लाभ मिलता है, और पूरा एक इकोसिस्टम है जो मजबूत होता है। जी, आपने फिल्म के डायलॉग से शुरुआत की थी, तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि आपकी पसंद का कौन सा गाना हम यहाँ श्रोताओं को सुनवाएं।
0: देखिए बहुत अच्छा है, एक शब्द है मैं चाहता हूं कि हमारे श्रोताओं को सुनाइए,
1: जी
0: देव सेवा पर मोहे अहे शुभ कर्मन ते कभो न टरो न
1: वाह
0: डरो असो जब चाहे लड़ो
1: जी,
0: निश्चय कर अपनी
1: अपनी
0: जीत
1: जीत
0: का,
1: करूं। जी
0: निश्चय कर अपनी
1: जी
0: जीत।
1: हमारे स्कूल्स में ये प्रार्थना भी होती थी और हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं यही शब्द।

0: इस शब्द के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की बात की और साथ ही इसके महत्व को समझने के लिए भी हमें प्रेरित किया। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में है। अब मैं कमांडर विक्रमजीत सिंह से जानना चाहूंगी, सर आप नौसेना में स्वदेशीकरण को किस तरह से देखते हैं और क्या इसका महत्व है?
1: पहली बात तो जय हिंद आपके सारे श्रोताओं को। नौसेना मैं ये बड़े गर्व से कहना चाहूंगा, आप सबको बताना चाहूंगा कि नौसेना वॉज द फर्स्ट मूवर, यानी कि प्राथमिक जो कदम लिए गए वो नौसेना में लिए गए एज फार एज इंडिजनाइजेशन इज कंसर्न। देखिये हम लोग जब स्वतंत्र हुए थे, जब हमें आजादी मिली थी 47 में, तो हम लोग ऑब्वियसली एक ब्रिटिश कॉलोनी थे, तो उनके कुछ एसेट्स हमारे पास 30-35 जहाज उस टाइम भारतीय नौसेना को मिले, मोस्टली वो ब्रिटिश ओरिजिन ही जहाज थे। उधर से जो नेवी शुरू होकर आज अगर आप देखते हैं तो हमारे पास 150 से ज्यादा जहाज हैं, जिसमें से आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 60-70% से ज्यादा हमारे जहाज इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। तो अगर आप नेवी का रोल देखते हैं, आप हिस्ट्री देखेंगे, तो कैसे हमारे एसेट्स बढ़े, मतलब 1960 में हमारे पास

0: विक्रांत आया पहले, वो भी एक इंग्लिश ओरिजिन जहाज था।
1: जी
0: उसके बाद हमें रशियन से सपोर्ट मिलनी शुरू हुई 60 के दशक में, उन्होंने हमें सबमरीन दिए, उन्होंने हमें कोई और वेसल्स दिए। लेकिन 70 और लेट पार्ट ऑफ 70s में हमने अपना स्वदेशीकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया था।
1: जी
0: हमने गिरी क्लास शिप्स बनाए, उदयगिरी क्लास जो थे, नीलगिरी क्लास शिप्स, लियांडर्स थे वो ब्रिटिश डिजाइन के, लेकिन वो बनाने शुरू किए। उसके बाद हमने गोदावरी क्लास शिप बनाने शुरू किए, और धीरे धीरे धीरे हमारी जो डिजाइन कैपेबिलिटी है और हमारी जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे धीरे मच्योर होती रही। कि और आज ये हाल है कि आप हर एक 40 दिन में, आप मान के चलिए 6 से 7 हफ्ते में हम एक शिप लॉन्च कर रहे हैं इस स्पीड पे। और अभी आपने रिसेंटली देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 शिप एक दिन पे जो
1: जी
0: कमीशन किए हैं वो अपने आप में हिस्ट्री में आई थिंक पहली बार हुआ है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि 3 बड़े जहाज, छोटे
1: जी
0: जहाजों की बात नहीं हो रही है, दूनागिरी जो एक फ्रिगेट है खुद ही 7,000 टन के करीब उसकी डिस्प्लेसमेंट,
1: जी
0: संशोधक सर्वे वेसल लार्ज वो भी 2,500-3,000 की उसकी डिस्प्लेसमेंट, अग्रे मिसाइल जो हमारा शैलो वाटर क्राफ्ट, तो इस लेवल पे हम पहुंच गए हैं। ये मैं आपको कहना चाहूंगा नीलम जी, जब हमने 1990 में जब हमने फौज ज्वाइन की थी तो सारे हमारे एसेट्स मोस्टली तो रशियन ओरिजिन थे या कुछ ब्रिटिश थे जो कि अपने लास्ट लेग ऑफ द सर्विस में थे। क्योंकि ये जो हमारे शिप्स होते हैं इसमें इसकी लाइफ करीब 25 से 30 साल आप मान के चलिए। लेकिन नेवी में एक और बड़ी खास चीज है कि वो सारी सर्विसेज की जो है उसका एक तरह से मिलन है या एक तरह से मिलोंजे है जिसको बोलते हैं। जैसे हमारे पास देखिए लैंड यूनिट्स भी हैं, हमारे पास एयर यूनिट्स भी
1: एयर
0: हैं,
1: यूनिट्स भी हैं।
0: हमारे पास सरफेस यूनिट्स हैं,
1: जी
0: और हमारे पास सब सरफेस यूनिट्स हैं। यानी कि हम चारों डायमेंशन में नेवी जो है वो अब देश की सेवा में और देश की हिफाजत में जुट है। तो इसमें मैक्सिमम जो इंडिजनाइजेशन आप देख रहे हैं अभी वो हमारे सरफेस यूनिट्स में बहुत इंडिजनाइजेशन एडवांस हो गई है।
1: जी
0: जबकि यू नो आजकल तो ऐसा है कि आप 60 से 70% के बिना तो आप एक शिप बना ही नहीं सकते, वो आपका मैंडेटरी है, आपको उतना तो इंडिजनाइजेशन कंटेंट रखना ही रखना है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा इसी सवाल के उसमें नीलम जी, के एक शिप में बनाने के 3 मुख्य पार्ट होते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं उसको। एक हम कहते हैं फ्लोट, यानी शिप को तैरना होता है जरूरी,
1: जी
0: जो उसकी बॉडी होती है, हल होता है। दूसरा होता है उसका मूवमेंट, यानी शिप को आपने एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना,
1: जी
0: उसके लिए आपको इंजन चाहिए, प्रोपेलर चाहिए, इत्यादि जो भी इक्विपमेंट चाहिए। और तीसरा होता है लड़ना, कि आपने मिसाइल डालने हैं, गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, एंटी एयर कैपेबिलिटी क्या है, एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी क्या है। तो वो सबसे मुख्य पार्ट है
1: जी
0: क्योंकि फाइनली ये सारे वॉरशिप हैं और इनका मेन काम है लड़ना।
1: लड़ना
0: लेकिन
1: जी
0: इन सब में आज की डेट में जो हमारा फ्लोट में हमने करीब 90% इंडिजनाइजेशन हो गया है, और फाइट में हमारी थोड़ी कैपेबिलिटी अभी इस पे काम करना अभी बाकी है।
1: चोल साम्राज्य के समय से हम अपनी नौसेना पर गर्व करते आ रहे हैं, हमारे जल सीमाओं के प्रहरी, और अब अलग अलग हिस्से हम उसके बारे में सुनते रहते हैं। INS विक्रांत पर तो पूरे देश को गर्व है ही। आपने बताया कि किस प्रकार से स्वदेशीकरण की शुरुआत हुई और लगातार बेहतर होता जा रहा है, तो इसी मोड पर मैं आपकी पसंद का एक गाना श्रोताओं को सुनवाना चाहूंगी।
0: नीलम जी मैं चाहूंगा कि आप, ये एक गीत है फिल्म लक्ष्य का,
1: जी
0: क्योंकि हमें अपनी एकेडमी डेज के बारे में और बहुत मोटिवेट करता है। गीत है हाँ यही रास्ता है,
1: जी
0: बहुत ही
1: बिल्कुल
0: मोटिवेटिंग गाना है, आई एम श्योर सब लोगों को, सर को और वापस एकेडमी लेके जाएगा ये।
1: जी, तो हम श्रोताओं को सुनवा रहे हैं लक्ष्य फिल्म का यही गीत।

0: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस प्यारे से गाने के बाद पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के बारे में। हमारे विशेषज्ञ हैं इस समय स्टूडियो में हमारे साथ, मेजर जनरल संजय मेस्टन हैं भारतीय थल सेना से, हमारे साथ हैं एयर कमोडोर डॉक्टर अश्मिंदर सिंह बहल वायुसेना से, और कमांडर विक्रमजीत सिंह हमारे साथ हैं नौसेना से। हमारे विशेषज्ञ हमें बता रहे हैं स्वदेशीकरण का महत्व और पिछले दिनों क्या बदलाव हुए हैं अपने अनुभव के आधार पर। तो संजय मेस्टन सर, एक बार फिर से मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने क्योंकि सर्विस में रहते हुए बहुत सारे देशों की यात्राएं की हैं, वहां के कार्य प्रणाली को बहुत नजदीक से आपने देखा है, समझा है, आप ये बताएं कि जब हम स्वदेशीकरण की बात करते हैं, क्या इसका एक पहलू ये भी है कि जो हमारे ब्लू प्रिंट्स हैं या जिसे हम ट्रेड सीक्रेट कहते हैं वो हम ही तक रहे, हमें साझा ना करने पड़े किसी के साथ, और जब वो सिर्फ हम तक रहेंगे तो हम उसमें तेजी से बदलाव कर सकते हैं और हमारी क्या ताकत है उसे हम छिपा कर भी रख सकते हैं, क्या एक पहलू ये भी है इसका?
1: बिल्कुल नीलम, एक पहलू वो भी है। देखिए, पहली बात ये, एक जो भी स्वदेशीकरण है ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। देखिए, इकोसिस्टम में बहुत कुछ चाहिए होता है, किसी भी, चाहे एक एयरक्राफ्ट को बनाना हो, चाहे जहाज को बनाना पड़े, चाहे मिसाइल को बनाना पड़े, चाहे ड्रोन को बनाना पड़े, उसमें बहुत कुछ चीजें हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है, एक बैटरी चाहिए, पावर, फिर चाहिए आपको, सबसे बड़ी चीज जो आज की तारीख में चाहिए है वो है आपको चाहिए हैं ये सेमीकंडक्टर्स, वो स्टार्ट पॉइंट हो जाता है, ब्रेन हो जाता है, जो चिप्स होते हैं। और ये एक खुद बहुत बड़ा, इसमें मैं बोलूंगा कि ये एक इकोसिस्टम है। आज कोई भी देश विश्व में ये टेक्नोलॉजी पूरी नहीं है कि पूरा एक सेमीकंडक्टर चिप वहां पर बन जाए। उदाहरण के तौर पे जो डिजाइनिंग होती है, ये जो चिप डिजाइन, ये स्टार्ट कहाँ होते हैं? अमेरिका में। मैन्युफैक्चर कहाँ होते हैं? ताइवान में। उसके पास जो ट्रांजिस्टर लगते हैं वो कहाँ होते हैं? वो होते हैं साउथ कोरिया में। जो चिप की काटना पड़ता है, जो लिथोग्राफी मशीन होती है, वो कहाँ से आता है? नीदरलैंड से। तो ये आप देखिए कितनी इको डिपेंडेंट सिस्टम है। और आपने हाल ही में सुना होगा कि जो एंथ्रोपिक है, ये जो अभी एआई का सिस्टम है यूनाइटेड स्टेट्स का, इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि उसमें फेबल 5 और माइथो 5 वो किसी भी देश को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उनके 5-6 देश हैं। तो कुछ जो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं वो हर कंट्री अपने देश में रखता है और वो हर देश को अधिकार है, और लेकिन कुछ चीजें जो ओपन डोमेन में है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा और उसमें हम एक्सपोर्ट करेंगे। डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो पहली बात होती थी ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स, उनको अभी मिक्स करके 7 DPS यूज कर दिया है। लेकिन जो ये आत्मनिर्भर भारत में सबसे बड़ी चीज आई है कि हमने प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी शामिल कर दिया है
0: जी,
1: और इस डिफेंस प्रोडक्शन में ये जो फिगर आई है 1.78 लाख करोड़ की इस साल, उसमें 24% है प्राइवेट इंडस्ट्री का
0: जी, ट्रिपल पी की हम बात करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
1: तो आप देखिए प्राइवेट इंडस्ट्री, आप याद करिए अमेरिका जैसे है, वहाँ जी है या जितने भी इनके टॉप टॉप कंपनीज हैं सिलिकॉन वाली, वो सब मतलब प्राइवेट प्लेयर्स थे, गवर्नमेंट के तो वहां किसी का नाम ही नहीं पता थे। आज इंडिया में भी यही हो रहा है कि जैसे अभी आपने देखा कि एक हैदराबाद में एक कंपनी है, उन्होंने नाग शस्त्र 150 ड्रोन बनाया है जिसकी रेंज है 1000 किलोमीटर, वो उसकी स्पीड मैक्सिमम है 3 to 3 किलोमीटर पर आवर। मैं ये क्यों कोट कर रहा हूं?

0: क्योंकि ये जो नाग शस्त्र हमने जो ड्रोन बनाया 150, ये इंडिया की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। और हाँ, दूसरा जो एक और अच्छा सवाल आपने उठाया था और इन्होंने भी बोला था, देखिए जहां तक डिफेंस एक्सपोर्ट्स का सवाल है
1: जी,
0: वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी हम उन्हीं चीजों का कर सकते हैं जो हम दे सकते हैं, लेकिन हर चीज को डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं करेंगे
1: जी।
0: और आपको पता होगा कि जो इस साल जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, जो टोटल फिगर्स हैं, वो है मतलब अगर मैं करोड़ में बोलूं तो 38423 करोड़, और ये एक टाइम पे 2000 करोड़ होता था, दैट मीन्स आज से एक डिकेड पहले, तो 19 टाइम्स गुना बढ़ गया है
1: जी।
0: आपको अभी पता है। एआई की अब मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एआई तो सबसे बड़ी चीज आज की तारीख में आ जाती है, उसमें क्या है कि एक हमारी खुद की ऑटोनोमी होनी चाहिए, मतलब टोटल कंट्रोल होना चाहिए, जिसमें हम सॉवरन एआई होना चाहिए, मतलब जो हमारे सर्वर्स, जो हमारे डाटा सेंटर्स, जो क्लाउड कंप्यूटिंग, सब कुछ वो सॉवरन होना चाहिए। और उस लिहाज से मैं बोलना चाहूंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कुछ बड़ी अच्छी चीजें की हैं। देखिए, मैंने सेमीकंडक्टर से स्टार्ट किया है, आज हमने माइक्रोन जो सिलिकॉन वैली से है, $800 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गुजरात में, और ये सारी जो आपकी चिप्स वो है उसमें जो उसकी असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग यहाँ पर होगी, और वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैं बोलूंगा क्लीन फैक्ट्री होगी, और सबसे ज्यादा आई थिंक वो 5000 स्क्वायर फीट का वो इलाका है, इतना वो बड़ा है।
1: यानी जब हम रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की बात कर रहे हैं तो इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, एमएसएमई भी है, साथ ही एफडीआई भी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, जो पॉलिसी प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, उसके थ्रू भी हम कहीं ना कहीं से बढ़ावा दे सकते हैं। आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर अश्मिंदर, हमने ये देखा कि बहुत सारी आपदाओं के समय भारत ने अपने पड़ोसी देश जो हैं उन्हें राहत सामग्री भेजी, मदद भेजी, और कोविड के समय भी हमने देखा कि हमारी एयरफोर्स ने जो हमारे स्टूडेंट्स फंसे हुए थे अलग अलग देशों में, हमारे नर्सेज थी या और भी इस तरह के हमारे सिटीजन्स थे, उनकी भी मदद की, और हमारे बहुत सारे जो मित्र देश हैं उनके नागरिकों को भी अलग अलग देशों से निकाला। आपसे जानना चाहूंगी जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, अगर हम वायुसेना की बात करें, तो एक आत्मनिर्भर देश एक मजबूत देश भी होता है, आप क्या समझते हैं इस नजरिए से, अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करें तो?
2: बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है नीलम जी आपने, इसमें बड़ी सारी चीजें आती हैं।
1: सब
2: एक बात आपने मेंशन की, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस, यानी कि जैसे नेपाल में 2015 में जो अर्थक्वेक हुआ था, तो भारत ने उस समय बहुत जल्दी से उनकी मदद के लिए जहाजों में रिसोर्सेज और रसायन भेजे थे। आपको याद होगा तुर्की में हुआ था, तब भी हमने भेजे। आपको याद होगा भी वेनेजुएला में जो हुआ इतना बड़ा, उसमें भी हमारे C-17 ग्लोब मास्टर जहाज 70 टन का करीब जो है रसायन को लेके गए थे इमीडिएट एड देने के लिए। अभी वहां भूकंप के झटके चल रहे हैं और भारतीय वायुसेना के जहाज लैंड कर रहे हैं, हमारे देश के रसायनों को वहां ले जाके उनकी मदद करे दे रहे हैं जहां हजारों लोग फंसे हुए हैं इस समय। तो कहीं ना कहीं देश का अपना स्टेटस जो होता है वो तभी उभरता है अगर आत्मनिर्भरता हो, तभी उभरता है अगर स्ट्रॉन्ग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हो, तभी उभरता है जब हमने 74% एफडीआई बना दिया आज डिफेंस के अंदर, जो आप बात मेंशन कर रहे थे, उससे ये हो गया है कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसको जैसे अब हम कर रहे हैं, हमने क्या किया है कि साफरान के साथ जो इंजन का हम बना रहे हैं 120 से 140 किलोटन न्यूटन। देखिए, सबसे मुश्किल चीज जो है दुनिया के अंदर एरो इंजन बनाना है, वो बहुत कम देश है दुनिया के जो बना सकते हैं। हमारा भी कावेरी इंजन अब बना है, जिसको हम अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स जैसे घाटक है उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो एक एरो इंजन फाइटर जहाज में, खासकर 5th जनरेशन या 6th जनरेशन जहाज में इस्तेमाल होना है, जो टेक्नोलॉजी अभी दुनिया में डेवलप हो रही है, जापान में हो रही है और फ्रांस में हो रही है, वो मिलके भारत बनाएंगे, तो इसमें ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, सोर्स कोड नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि बना हम मिल करके रहे हैं, को डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, जैसे हमने ब्राह्मोस को डेवलप किया, को डेवलप किया। और एक और चीज आ जाती है, जब हम एक साउथ एशिया में या इंडो पैसिफिक में या इंडियन ओशन के रीजन की हम जब बात करते हैं, तो भारत को एक बहुत बड़ा देश का तरफ देखा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिको इकोनॉमिक वेट जो भारत का है वो सभी को मालूम है। हम बात कर रहे थे इससे पहले भी, हम कहते थे कि अफगानिस्तान में कुछ लोग हैं वो या फिर जो बलूचिस्तान में है वो भारत आना चाहते हैं, उनके लिए पेरिस भारत है और कुछ नहीं है, वो फॉरेन नहीं जाना चाहते। तो कहीं ना कहीं जो ये

0: हमारा इमेज है एज अ स्टेबिलाईजर, वासुदेव कुटुंबकम, वैसे मेरे स्कूल का मोटो था ये। तो कहीं ना कहीं ये जो मोटो है कि पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है, भारत ने तो कब से बुद्धिज्म के टाइम से ये फॉलो करता आ रहा है, भारत हिंदुइज्म या वैदिक लिटरेचर है उसके अंदर भी ये चीजें की मेंशन होती है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी मजबूत रहती है, और हम सहायता यमन में आपने देखा
1: जी
0: सबसे पहले भारत पहुंचा था पाकिस्तानी सोल्जर्स को। अरे मेरे को आपको एक अच्छी कहानी सुनानी है इसके अंदर, क्योंकि इतनी सारी टेक्निकल बातें हो गई, एक कहानी रह गई।
1: जी
0: ये है 2005 की, कॉन्गो के अंदर यूएन पीस कीपिंग स्टेबिलाईजेशन मिशन चल रहा था। वहां पे पाकिस्तानी भी थे, बांग्लादेशी भी थे और भारतीय भी थे। वैसे मैं एक चीज आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जो यूएन पीस कीपर्स होते हैं वो इन्हीं तीन देशों से आते हैं इस
1: जी
0: समय। सबसे ज्यादा 5,600 जो हैं बांग्लादेश से हैं, 5,200 से 500 भारत के हैं, और 2,600 के करीब हैं पाकिस्तान के। उस समय 5 बांग्लादेशी को मार दिया गया, उधर के जो मिलिशिया थी उन्होंने मार दिया था कॉन्गो के अंदर। तो इस इतिहास करके एक जगह थी जहां मारा उनको।
1: जी
0: उस समय पाकिस्तान के सोल्जर्स को भेजा गया था कॉर्डन एंड सर्च करने के लिए गांव के अंदर। वो बेचारे फंस के, चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, तब उन्होंने भारत से मदद मांगी थी। और भारत के जो MI-25/35 अटैक हेलीकॉप्टर है वो गए, उन्होंने सप्रेशन किया, 50 के करीब मिलिशिया के लोगों को मारा। फिर हमारे MI-17 गए और उन्हीं पाकिस्तानी सोल्जर्स की कैजुअल इवैक्यूटीज या जिनको वहां से इवैक्यूएट करना था उनको लेके आए ताकि उनको बचा सके। ये है भारत, हम ये नहीं देखते कि हमारा दुश्मन कौन है। मदद में जब भी कोई पुकार करता है सबसे पहले भारतीय और भारतीय वायुसेना के जहाज वहां लैंड कर रहे होते हैं, भारतीय सेना वहां पे कर रही होती है ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस, और भारतीय नेवी के जो जहाज हैं वो लार्ज स्केल इवैक्यूएशन कर रहे हो।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई, और यही वजह है शायद कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर देशवासी से ये उम्मीद करते हैं कि वो अपनी अपनी भूमिका निभाता रहे। और कहा भी है प्रधानमंत्री जी ने कि हम जो है देश के लिए मरने का मौका सबको नहीं मिलता, लेकिन देश के लिए जीने का जो अवसर मिलता है उसमें हम अपने देश पर गर्व करते हुए जिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कमांडर बिक्रमजीत सिंह, भारतीय नौसेना को तो बिल्डर्स नेवी कहा जाता है और बहुत सारी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं, ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम जब इसकी कमर्शियल एक्टिविटीज की बात करते हैं या हम बात करते हैं अपनी मर्चेंट नेवी की, क्या उसमें भी स्वदेशीकरण के कुछ लाभ हो सकते हैं? क्योंकि सीधे तौर पर इसे हम दो बिजनेस से जोड़कर देखते हैं, क्या उसमें भी लाभ होता है स्वदेशीकरण से?
2: बिल्कुल सही नीलम जी, देखिए हम जैसे मैंने आपको पहले हिस्ट्री बताई थी, तो 60s, 70s और थोड़ा अर्ली 80s तक हम एक बायर्स नेवी थे, जो मैं अभी इंडियन नेवी की बात कर रहा हूँ, और फिर हमारा ट्रांजिशन हुआ टू बिल्डर्स नेवी जैसे आपने बताया, और इतना पूरा एक तरह से एक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ शिप बिल्डिंग को लेके।
1: जी,
2: क्योंकि शिप बिल्डिंग का एक अलग इकोसिस्टम रहता है, एक अलग टाइप के एमएसएमई सपोर्ट रहते हैं, एक अलग टाइप का क्लस्टर रहता है। आपने देखा होगा अभी जो हमारे कुछ मैरिटाइम क्लस्टर्स बन रहे हैं, डेफिनेटली कोस्टल स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, अगर आप वेस्ट में देखें महाराष्ट्र में, गुजरात में, नीचे आइए आप तो फिर ईस्ट में तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, ओडिशा।
1: जी,
2: तो इन स्टेट्स में हमारे क्लस्टर्स बन रहे हैं जहाँ पे इंडिजनाइजेशन और शिप बिल्डिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन जो हमारे जो मेनली अभी हमारी जो वॉरशिप बिल्डिंग हो रही है वो हो रही है हमारे DPSUs में, यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शिपयार्ड्स में, और एक ऑफकोर्स हमारा PSU शिपयार्ड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है केरला में। तो 4 DPSU है, 1 PSU है, तो ये अपना एक अलग इकोसिस्टम बना के चल रहे हैं। इस इकोसिस्टम को और इसका महत्व समझते हुए हमारी गवर्नमेंट ने और प्रधानमंत्री जी ने जो एक क्लैरियन कॉल दिया था कि कमर्शियल शिपिंग में भी
1: जी
2: अब हमारा आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। आपको डेफिनेटली याद होगा कि उन्होंने दो एक MIV दिया, एक विजन दिया है 2030 के लिए, यानी कि 2030 तक इंडिया को कमर्शियल शिपिंग में कहाँ पहुंचना है दुनिया में। आज हम बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हमारी प्रेजेंस है, 2030 तक हम चाह रहे थे कि हम टॉप 10 नेशंस में आ जाएं।
1: जी,
2: तो ये उन्होंने एक लक्ष्य दिया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जिसको जो स्टीयर कर रही है, और 2047 जो हमारा अमृतकाल विजन दिया था उन्होंने 100 साल हमारे इंडिपेंडेंस के, कि हम टॉप 5 नेशंस में आ जाएं। तो ये कहना बहुत ही सरल है और करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सारी एजेंसीज को इस तरह से मोटिवेट किया और इस तरह से चैनलाइज किया, कोऑर्डिनेट किया कि हम उस तरफ अभी हमें वो होता हुआ धीरे धीरे नजर आ रहा है।
1: जी,
2: तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रोत्साहन भी दिए हैं, उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स दी हैं, फाइनेंशियल एड्स दिए हैं, जो कि आपको अगर आप शिप बिल्डिंग इंडिया में करवाते हैं तो आपको कुछ डायरेक्ट एड्स मिलती हैं,

0: डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन मिलता है, और जो शिपयार्ड हैं जिनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, चाहे ब्राउन फील्ड हो ग्रीन फील्ड हो, उनके लिए भी अलग जिसको मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड है, तो काफी पैसा सरकार ने ईयर मार्क किया और इसके ऊपर भी बहुत सारा थ्रस्ट है।
1: जी
0: किसी भी शिप बिल्डिंग एक्टिविटी में कई ऐसी चीजें होती हैं जो आप क्रॉस यूटिलाइज कर सकते हैं। एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे इंटरनेट था, वो बेसिकली पहले US मिलिट्री के यूज के लिए बनाया गया, और उसके बाद वो इंटरनेट अब देखिए अब किस स्तर पे पहुंच गया, जब उसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया और कहां वो पहुंच गया। सेम चीज मोबाइल के साथ हुई। तो इसी तरह से जब ये कमर्शियल शिप बिल्डिंग और नेवल शिप बिल्डिंग, वॉरशिप बिल्डिंग है, इसमें जब समन्वय होगा, थोड़ी कोऑर्डिनेशन होगी, तो कई इक्विपमेंट ऐसे हैं जो कि हमारे क्रॉस यूटिलाइज हो जाएंगे और हमारी कॉस्ट ऑफ शिप बिल्डिंग जो है वो ग्लोबली कंपेटिटिव हो जाएगी। तो वो एक क्लैरियन कॉल दिया है अभी प्राइम मिनिस्टर ने और भारत सरकार ने, और आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो ईरान कॉन्फ्लिक्ट में, जो कि हमारे जो मर्चेंट नो मरीनर्स थे, जो चुपचाप अपना काम करते रहते थे,
1: जी
0: महीनों महीनों घर से दूर रहते थे, किस कंडीशंस में उन्होंने शिप्स को लेके जाते, इतनी हाई सीज रफ सीज, तो उनको कोई मतलब सब भूल गए थे जब तक कि ये हुआ। ये एक बात है, आज की डेट में करीब इंडिया में करीब 0.1% ग्लोबली शिपिंग हमारी इंडिया की है, इंडियन ओन्ड। तो इसको अब हमने बोला था टॉप 5 और टॉप 10 में लेके जाने के लिए, मतलब बहुत ही ये कठिन कार्य है, लेकिन ये तभी संभव है जबकि हम सारी शिप्स ओन करने लग पड़े,
1: जी
0: और सारी ये जो पॉलिसीज हैं, ये इंसेंटिव्स हैं, ये इसी की तरफ हैं कि इंडियन बिल्ट, इंडियन फ्लैग्ड एंड इंडियन ओन्ड वेसल्स को बढ़ाने के लिए इसका भी एक टारगेट दिया हुआ है कि इतने मिलियन टन जो है वो हमारी मतलब शिपिंग हमारी हो जानी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया
1: जी
0: 2030 तक और 2047 तक। एंड जो हमारे मेन इक्विपमेंट होते हैं नीलम जी, मैं ये लास्ट चीज कहना चाहूंगा, जैसे इंजन, तो इंजन जो हवाई जहाज के भी बहुत ही स्पेशलाइज इक्विपमेंट है, सिमिलरली जो इंजन जहाज के होते हैं वो भी स्पेशलाइज इक्विपमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजों को इंडिजनाइज कर पाए, क्योंकि उसका
1: जी
0: आपको कॉस्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपके उतने नंबर्स नहीं है। तो दुनिया में कई लोग ही हैं जो बनाते हैं, किंतु अगर हम ये चीजें कमर्शियल शिप में भी लगती हैं और कई ऐसी चीजें वॉरशिप्स में भी लगती हैं, तो ऐसे इक्विपमेंट हमें लेके मान के चलना पड़ेगा कि ये तो कई चीजें हमें बाहर से मंगानी पड़ेंगी। इसमें एक ही एडवांटेज है, जब आप बाहर के जो OEMs हैं आप इंडिया में उनको ला सकें, जो कि अभी हम बोल रहे हैं कि आप यहां आके बनाइए,
1: जी
0: मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, तो उससे जो हम बोलते हैं स्पिन ऑफ इफेक्ट्स, यानी कि जो मल्टीप्लायर इफेक्ट्स इकोनॉमी को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, उसका फायदा हमें हो सकता है।
1: जी बहुत अच्छा आपने बताया। और जैसा कि आपने कहा कि मरीनर्स आराम से काम करते रहते थे शांति से, ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं था, इसी तरह से हमारी पनडुब्बियां भी कितने कितने महीने पानी के अंदर ही काम कर रही हैं लगातार, लेकिन इन्हीं प्रयासों से हम सुरक्षित भी हैं। और हिंद महासागर में भारत की जो बढ़ती उपस्थिति है और दमदार होती उपस्थिति जो है, वो भी हमारी नौसेना के बलबूते ही है। सर, मैं आपसे अब आपकी पसंद का कोई गाना जानना चाहूंगी जो आप श्रोताओं को सुनवाएंगे।
2: फौजी में इमोशंस बहुत होते हैं,
1: जी
2: तो गाना है संदेशे आते हैं, और इसका
1: जी
2: कारण यह है, ये बॉर्डर पिक्चर का है, और मेरे दोनों छोटे जो बेटे थे उस समय
1: जी
2: वो स्कूल में थे, लेकिन ये मूवी देख के उनको बहुत मोटिवेशन हुआ और आज वो भारतीय सेना में दोनों ऑफिसर हैं।
1: बहुत अच्छी ये बात आपने हमें बताई, हमारे श्रोता जरूर प्रेरित होंगे इस बात को सुनकर। और ये प्यारा सा गाना हम सुनवा रहे हैं अपनी ऑडियंस को।

0: तो जोश लगाते इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। हमारे तीन विशेषज्ञ इस समय स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की, स्वदेशीकरण की हम बात कर रहे हैं, और अपने विशेषज्ञों के बहाने आज हम अपनी सेनाओं को और नजदीक से जान रहे हैं। जो हमारे मन में आदर भाव है, सम्मान है, वो और बढ़ता जा रहा है ये जानकर कि किस तरह से हमारी सेनाएं लगातार देश की सेवा में लगी रहती हैं और किस तरह से हम जिसे अपना विकास कहते हैं उसमें मील का पत्थर होते हैं हमारे फौजी, हमारी सेनाएं। सर, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी संजय मेस्टन जी, जब हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो मेक इन इंडिया को अगर बढ़ावा मिलेगा, जिसमें कि हम अपने त्योहारों में इस्तेमाल होने वाले दिए और मोमबत्ती से लेकर अब हम अपने फाइटर जेट्स तक की बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये कहीं हमारे शिक्षा जो है उसे भी प्रभावित करेगा, हमारी शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा विस्तार होगा इस बहाने?
1: बिल्कुल, शिक्षा में तो बहुत विस्तार होगा। देखिए, पहली बात, ये जो भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है हर चीज में, ओवरऑल नेशन बिल्डिंग में,
0: जी
1: हर भारतीय को फख्र होगा कि मैं भारत देश को बिलोंग करता हूं। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, हम चार लोग यहाँ बैठे हैं और हम चारों बाहर जा रहे हैं, कई देशों में जाते हैं, हमें बहुत फख्र होता है कि सब बोलते हैं आप इंडिया के हैं। तो इंडिया का जो आज एक ग्लोबल रीच बढ़ गई है
0: जी,
1: जो उसके भी कई कारण है। देखिए, सबसे बड़ा कारण है, तीन फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लीडरशिप, इकोनॉमिक ताकत और मिलिट्री ताकत। ये तीन चीजें कॉम्बिनेशन है, ये देश की एक नेशनल पावर को डिफाइन करता है
0: जी।
1: जब ये सब पावर मिलती है एक देश को, अपने आप दिखती है। और आपने देखा है G20 समिट में जिस प्रकार भारत ने लीडरशिप लेके अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाया, वो एक मास्टर स्ट्रोक था। उसी G20 समिट में IMEC कॉरिडोर जो हमने अनाउंस करवाया, जिसमें प्रेसिडेंट बाइडेन थे और जिसमें आप देखिए मल्टीलेटरल कंट्रीज हैं, यूरोप, इजराइल, पूरा गल्फ कंट्रीज और भारत। तो आप ये देखिए कि ये मास्टर स्ट्रोक से, अब जब ये सब होता है तो भारत का जब एक आइडेंटिटी पूरे विश्व में बढ़ती है और आज सारा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, एक राइजिंग पावर है। मैं तो बोलूंगा जो ग्लोबल साउथ के हम कैपिटल हैं इंडिया, अगर ये हो रहा है तो जाहिर है कि एडुकेशन का विस्तार बहुत होगा, उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। एक कर्तव्य, एक प्राइड कि मैं भारतीय हूँ। कुछ साल पहले हमारे कई बच्चे बाहर जाना चाहते थे, अब वो चेंज हो रहा है, क्योंकि जब एक सेल्फ रिलायंट इंडिया है, आज हमारी रोड्स देखिए फर्क पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्क पड़ रहा है, और आज की तारीख में टेक्नोक्रेट्स को ज्यादा वजूद दिया जा रहा है हमारे सिस्टम में। अगर वो दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली जो यंगस्टर्स हैं, और जो प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया हमने
0: जी,
1: तो यंगस्टर्स आज उनको समझ में आ रहा है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट था ये प्रोग्राम में कि लोगों को पता होना चाहिए भारतीय सेना क्या है
0: जी।
1: और अब कैसे पता चल रहा है, भारतीय सेना जब ये सारी प्राइवेटाइज हो गई है ये आत्मनिर्भर भारत में, तो कितनी सारी MSMEs आ चुकी है, उसमें काम करने वाले कौन है, यूथ, हाईली टैलेंटेड यूथ।

0: AI experts, software experts, उनको exposure मिल रहा है, तो वो जब देखेंगे तो फिर वे बाहर क्यों जाएंगे? और जब इंडिया में हम इतना प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, चाहे AI हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे ड्रोन्स हो, चाहे सब कुछ हो, चाहे एयरक्राफ्ट इंजन हो, सब कुछ अगर हम जब इंडिया में कर रहे हैं, तो जहाँ पर जॉब्स हैं और जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं और जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और जहाँ सैलरीज अच्छी हैं, तो ऑब्वियसली लोग को फिर और बढ़ावा मिलेगा एडुकेशन की तरफ ध्यान देने को। जो हमारा पहले ब्रेन ड्रेन होता था ना, बाहर जाते थे, अब मेरे को लग रहा है अगले 10 साल के अंदर या 2047 तक मैं बोलूंगा, इंडियंस विल रिमेन इन इंडिया और आप देखिएगा हमारा विस्तार बहुत होगा, तो एडुकेशन से इस पे प्रभाव पड़ेगा।
1: यानी जब हम स्वदेशीकरण की बात करते हैं तो ऐसा दिखता है कि सेनाएं मजबूत हो रही हैं, लेकिन इससे अपने आप रोजगार भी मिल रहा है लोगों को और शिक्षा के क्षेत्र का भी विस्तार हो रहा है। और जैसा कि हमें बताया डॉक्टर अश्विंदर ने कि जब सुरक्षित देश है तो मजबूत देश भी है, जरूरत पड़ने पर हम अपने जो पड़ोसी देश है उनकी मदद भी कर सकते हैं। ऐसे में मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, आप अपने अनुभव से बताएं, आपने इतने सारे देशों में देखा है, उनको काम करते हुए देखा है, कई यात्राएं आपने इस दौरान की हैं, जो भारतीय सेना है बेहद सम्मान के साथ देखा जाता है भारतीय सेना को, और हमारे बहुत सारे इस तरह की एक्सरसाइज होती हैं जिसमें अन्य देशों की सेनाएं सब मिलकर काम करते हैं, वो एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। ऐसे में भारतीय सेना जो है उसकी स्थिति दुनिया में क्या मानी जाती है, और जो अगर मजबूती है तो क्यों मानी जाती है वो?
0: मैं बहुत घमंड के साथ बोल सकता हूँ नीलम, भारतीय सेना की जो छवि है वो विश्व में नंबर वन है।
1: जी
0: मैं कई कंट्रीज में गया हूँ, 23 कंट्रीज ऑफिशियली गया था ऑन ड्यूटी।
1: जी
0: टॉप कंट्रीज हैं, अमेरिका है, इजराइल है, टर्की है, जापान है, फ्रांस है, मलेशिया है, मतलब चाइना है। चाइना में मैं खुद एज अ इंडियन डेलीगेशन लीडर गया था, जो चाइना में फर्स्ट SCO पीस कीपिंग एक्सरसाइज हुई थी 2005 में, मैं उसको विटनेस करने गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सारा तजुर्बा देखते हुए और हर कंट्रीज में आज विश्व की सारी सेनाएं चाहती हैं कि भारत के साथ बाइलेटरल, मल्टीलेटरल, ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेस करना चाहती हैं, क्योंकि जो हमारी एक एक्सपीरियंस है काउंटर इंसर्जेंसी में डील करने की, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन में डील करने के लिए, टेररिज्म को डील करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह देने में, रिस्पांस सिस्टम में, हमारी जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है, जो एक एक्सपर्टीज है। और भारतीय सेना एक वो सेना है जो ऐसी जगह डिप्लॉयड है, सियाचिन ग्लेशियर से लेके नागालैंड तक, से लेके डेजर्ट तक, और नेवी के साथ भी हमने इतनी फंक्शनिंग करते हैं, एयरफोर्स के साथ भी। तो कहने का मतलब है जो हमारी काबिलियत है, हमारी कैपेबिलिटीज है, वो कैपेबिलिटीज को देख के पूरा विश्व, मैं बोल सकता हूँ वी आर नंबर वन, पूरा विश्व आज चाहता है कि भारत सेना के साथ ट्रेनिंग करें। और मैं क्योंकि अफगानिस्तान में था तकरीबन 3 साल, वहाँ 53 कंट्रीज मैंने देखी थी अमेरिका द्वारा लेड किए हुए। मेरे को वो हर मीटिंग में बुलाते थे, चाहे वो नेटो सेक्रेटरी जनरल आता था, चाहे इनके आर्मी चीफ्स आते थे हर कंट्री के साथ, तो मेरे को तब इतना फख्र होता था कि इंडियन व्यू पॉइंट वो सुनना चाहते हैं। और इंडिया की जो छवि है इंडियन आर्म फोर्सेस की बहुत ही सॉलिड है। और एक और चीज मैं इसमें बोल रहा हूँ, रेजिमेंटेशन, जितने फॉरेन चीफ्स आते थे इंडिया में वो बताऊं क्या बोलते थे, आपकी जो एक रेजिमेंटेशन स्पिरिट है
1: जी।
0: आज अगर मैं जाट रेजिमेंट का हूँ तो मेरे जो जाट रेजिमेंट वाले वो जवान है वो बिल्कुल मतलब अपनी रेजिमेंट के नाम पे मर जाएंगे। मैं वैसे महा रेजिमेंट का हूँ, तो महा रेजिमेंट वाले जो मेरे जवान है उनका एक अलग जज्बा होगा, डोगरा का अलग होगा, मराठा का अलग होगा
1: जी।
0: तो ये रेजिमेंटेशन है, ये सिर्फ इंडियन आर्मी में है, ये यूनिकनेस है। मैंने अमेरिकन फॉरेन चीफ जो यहाँ पर आए थे आर्मी चीफ, उनसे खुद सुना था कि दिस इज द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट द इंडियन आर्मी। तो ये हमारी जो कामरेडरी है, भाईचारा है, आपसी संबंध है, जवान और ऑफिसर के जो रिश्ते हैं, तो ये सारी चीजें ये विश्व वाले देखते हैं, इंक्लूडिंग चीनी, ये भी चाहते हैं हमारे साथ एक्सरसाइज करने के लिए, और हमने किए हैं चीन के साथ भी, SCO के साथ एक्सरसाइज। तो मैं घमन के साथ बोल सकता हूँ, मेरे को इस पे कोई वो नहीं है, एज अ फौजी वी आर नंबर वन एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड आर्म फोर्सेस, नॉट आर्मी, आर्म फोर्सेस, इंक्लूडिंग नेवी, इंक्लूडिंग एयरफोर्स। नेवी के साथ जो वाइजैक में शायद आपने भी कवरेज किया था उस एक्सरसाइज को,
1: इंटरनेशनल रिव्यू,
0: उसमें ईरानियन शिप भी थी और यूनाइटेड स्टेट्स की शिप भी थी।
1: ऐसे में बताएं, बहुत रोचक बात आप बता रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नो फर्स्ट यूज हमारी पॉलिसी रही है, तो जब हम अपने डिफेंस बजट को बढ़ाते हैं तो कुछ लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं और कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं जो थोड़े नाराज भी हो जाते हैं और बार बार ये बात लेकर आते हैं कि डिफेंस बजट क्यों बढ़ाया जा रहा है। और अब तो हम स्वदेशीकरण की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
0: मेरे ख्याल डिफेंस बजट तो और बढ़ना चाहिए
1: जी,
0: क्योंकि देखिए सिक्योरिटी

0: इकोनॉमिक्स है, और देखिए अगर डिफेंस सॉलिड है तो इकोनॉमिक आपकी सॉलिड बढ़ेगी.
1: जी
0: ये बहुत कोरिलेटेड है, और चीन एक बहुत बड़ा एग्जांपल है. 2050 का उसका विजन था कि हम कोई लड़ाई वड़ाई में के पंगे नहीं फंसेंगे, हम मिलिट्री कंसोलिडेशन, इकोनॉमिक कंसोलिडेशन. आज भारत भी वही कर रहा है, क्योंकि मेरा तो इसमें विचार है डिफेंस बजट और बढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट दे रही है, और कैपिटल एक्विजिशन पे भी हमें थोड़ा ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि खासकर एयरफोर्स और नेवी के लिए ये जरूरी है. कैपिटल एक्विजिशन मतलब ये नहीं कि हमने बाहर से खरीदना है, उसको
1: जी
0: हम इंडिजनाइज भी कर सकते हैं.
1: तो डॉक्टर अश्विंदर आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे दूसरे देशों से सीखने की बात करें तो जापान में तो SDF अभी तक रहे, सेल्फ डिफेंस फोर्सेस रही, सिर्फ आत्मरक्षक बल थे। कहते हैं कि हमें कहीं आक्रमण नहीं करना, तो सेनाओं की हम क्या जरूरत है उतना बजट देने की। आपसे जानना चाहूंगी मैं कि ये जो पॉलिसी होती है कि हमें क्योंकि लड़ाई नहीं लड़नी है इसलिए हम सेनाओं को मजबूत नहीं रखेंगे, आप इस बारे में क्या कहेंगे?
2: देखिए, डिटरेंस का मतलब ही ये होता है कि आपकी आर्म फोर्सेस इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी देश विश्व का सोच नहीं सकता आपके ऊपर हमला करना. अगर हम एक ऐसी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं
1: जी
2: जिसमें पूरी इकोनॉमी फ्लावर करती है हमारे देश की, तो वो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट देती है हमारी आर्म फोर्सेस, तीनों आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स. हम कह रहे थे ना कि हम दूसरों से क्या सीखते हैं.
1: जी
2: अभी आपने सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की बात करी, आपको पता है कि उनका डिफेंस बजट मल्टीफोल्ड हो गया जापान का. अब उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि
1: जी
2: उनको अमेरिका की अम्ब्रेला नहीं मिलने वाली, और वो अपनी जो उनकी इंजिन्स की कैपेबिलिटी है, जो उनके जहाजों को बनाने की कैपेबिलिटी है.
1: जी
2: आपको ये भी मालूम होगा कि 6th जनरेशन ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में इटली और यूके के साथ मिलकर अहम रोल प्रोवाइड कर रहे हैं.
1: जी
2: और अगर शिप्स में देखें, वो कमांडर साहब ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन उसमें भी और जो इंजन्स है उसके अंदर तो उन्होंने बहुत अच्छी माहिरता प्राप्त कर ली है. दूसरी चीज आ जाती है, अगर हम अपना एनवायरमेंट देखें आसपास का, हम लोग प्रेडेटरी नहीं है, हमें दूसरों की टेरिटरी नहीं चाहिए, हमें
1: जी
2: दूसरों की जमीन नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप को और आसपास के एरिया को अगर प्रोटेक्ट करना है, इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट करना है, तो बहुत जरूरी है कि हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग हो. अभी भी हमारी आर्मी 50,000 से ऊपर 3,488 किलोमीटर बॉर्डर पे डिप्लॉयड है,
1: जी
2: लद्दाख में है, दूसरी जगहों पे है, अरुणाचल प्रदेश. कितनी मुश्किल कंडीशंस में वो पूरे पूरे साल रहते हैं, जहां पे टेम्परेचर्स -20 -30 तक पहुंच जाते हैं, और फिर जब गर्मी आती है तो फिर कहां, आपको पता है रेत में कहां पे इनके टेम्परेचर्स 50 डिग्री से ऊपर. तो उसी तरीके से हमारी तीनों सेनाएं जो डिप्लॉयड है हर जगह, ये इसलिए डिप्लॉयड है ताकि दूसरा आंख उठाकर भी हमारी धरती पे ना देख सके.
1: जी
2: और अब आप देखिए यूक्रेन का हाल, उनकी सेनाएं उतनी स्ट्रांग नहीं थी, उनकी इतनी बर्बादी हो चुकी है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी आर्म फोर्सेस स्ट्रांग होगी तब आप हर लड़ाई जीत लोगे,
1: जी
2: ऐसा भी नहीं है. क्योंकि आपने अमेरिका के साथ देखा, उन्होंने उसके भी तोड़ देख लिए, वो सरवाइव कर रहे हैं अटैक्स के अंदर उन सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए जिससे कॉस्ट इफेक्टिव रहे हो, चाहे वो
1: जी
2: ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, या उनका जोग्राफिकल जो उनका पूरा का पूरा टेरिटरी है डिफेंस की ओरिएंटेड की तरफ, ओरिएंटेशन की तरफ. तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी होता है कि हमें तो नहीं किसी की टेरिटरी चाहिए. हमने कई
1: जी
2: बार बहुत क्लियरली किया, हाँ हमें सिर्फ अपना जो जेन्युइन लीगल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो वापस चाहिए. आज नहीं तो वो खुद अपने आप, हमने तो कोई लड़ाई नहीं की अभी, हम तो अपने भेज नहीं रहे लोगों को. इसका
1: जी
2: मतलब है हमारी ऑफेंसिव इंटेंशन नहीं है, लेकिन डिफेंसिव होने के लिए भी आपकी क्षमता इतनी स्ट्रांग हो कि दूसरा देश 10 बार सोचे कि वो आप पे हमला करे कि नहीं करे. एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं, अगर आप
1: जी
2: परमिट करें. एक चीज कहते हैं हम सिविल मिलिट्री फ्यूजन, हम जो सीख सकते हैं दूसरों से, तो हम चीन से ये चीज सीख सकते हैं. उन्होंने क्या किया, आप बात कर रहे थे ना एजुकेशन की, तो उनका एक है 7 Sons of National Defense. जैसे बेजिंग की यूनिवर्सिटी या बेजिंग की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, या दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज हैं जो बेजिंग के अंदर, कुछ ऐसी हैं जिनको वो फंड भी करते हैं ताकि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के ऊपर वो फोकस कर सकें. तो ये चीज हमने शुरू कर दी है. अब ये जो बुलेट प्रूफ वेस्ट हैं जो आर्मी यूज करती है हाई ऑल्टीट्यूड्स में, उसमें कहीं ना कहीं रोल रिसर्च का यूनिवर्सिटीज का भी रहा है, और ये इनोवेशन सेल्स जो बन रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर. लेकिन जिस संख्या में अगर हम इसको थोड़ा और तेज गति लेके आए, एक सिविल मिलिट्री फ्यूजन हो, तो हमारा देश और भी स्ट्रांग बनेगा.
1: जी यही कामना सभी की. और मैं कमांडर विक्रमजीत सिंह, चलते चलते क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका मैं

0: जानना चाहूंगी।
1: बिल्कुल सही। अगर आप एक स्ट्रांग मिलिट्री पावर नहीं है तो ऑब्वियसली आपका अस्तित्व हमेशा खतरे में है। ये अभी बहुत क्लियरली विश्व में वापस लोगों को समझ में आने लगा है, जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद और कोल्ड वॉर के बाद बिल्कुल जिन्होंने बोला था नहीं हमें नहीं लड़ाई लड़नी, हमें नहीं करना, हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चाहिए,
0: जी
1: अब आपने देखा सब लोग धीरे धीरे यू टर्न मार रहे हैं। जापान सबसे पहले उन्होंने अपनी एक नई फ्रिगेट लॉन्च कर दी है कि भाई ये प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं।
0: जी
1: फ्रांस बोल रहा है अब मैं न्यूक्लियर वेपन अपना फिर से प्रोग्राम शुरू कर दूंगा। तो जैसे जैसे जियोपॉलिटिक्स चेंज होता जा रहा है, लोगों ने अपने अपने जो उनके डिसीजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू सोवरेनिटी एंड डिफेंस ऑफ द नेशन, तो वो उन्होंने बदले हैं बिल्कुल इसमें। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बात करते आ रहे हैं अभी तक, कि जब तक आपका स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं होगा नीलम जी, आप एक स्ट्रांग मिलिट्री भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भरता का मतलब है आपका खुद का स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होना।
0: जी
1: आज तक इंडिया ने पूरे विश्व में अपना झंडा गाड़ा था सॉफ्ट सर्विसेज में, यानी कि सर्विसेज में,
0: जी
1: सॉफ्टवेयर में हम नंबर वन है, चिप डिजाइन में आप देखें अमेरिका में तो इंडियंस हैं उसमें,
0: जी
1: और एआई में भी ऑब्वियसली फिर इंडियंस हैं और बहुत आगे आगे हैं और बहुत वेल पेड हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं जो हम थोड़ा पिछड़ गए थे, जिसकी इम्पोर्टेंस देश ने समझी है, और इसके
0: जी
1: ऊपर भी एक प्रधानमंत्री जी ने अलग से क्लैरियन कॉल दिया है कि हम अपने ब्लू कॉलर वर्कफोर्स को कैसे और स्ट्रेंथन करें, हमारे मैन्युफैक्चरिंग कैसे स्ट्रेंथन हो, ये सारे कॉरिडोर्स वगैरह उसी की ओर एक कदम थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये भी हो जाता है तो हम वाकई कह पाएंगे जी हाँ हम सेल्फ रिलायंट हैं, आत्मनिर्भर हैं। क्योंकि पीछे अगर आपको याद हो हमने देखा था कि कई ऐसी कंट्रीज हैं कि पहले बात हो रही थी कोविड के बाद ये बात शुरू हो गई थी कि चाइना को आप सप्लाई चेन से हटा दीजिए, फिर आपने देखा होगा कि वो चाइना प्लस वन पॉलिसी आ गई वर्ल्ड में। चाइना को हटाना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो हर एक के मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में है, तो प्लस वन, तो
0: जी
1: प्लस वन में आज की डेट में अगर आप विश्व में देखें स्टेबिलिटी वाइज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाइज, इंडिया इज द लीडिंग कंटेंडर, तो उससे क्या फायदा होगा, विश्व का भी फायदा है और भारत का भी फायदा है। आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड।
0: फॉर द वर्ल्ड, बहुत अच्छी बात आपने बोली। और हम ट्रेड बास्केट की बात जो कर रहे थे कि हमारे आत्मनिर्भर होने से उसमें भी संतुलन बना रहेगा। तो ये है भारत, समुद्र से आकाश तक, सुरक्षित भी, आत्मनिर्भर भी। और जिनकी वजह से सुरक्षित है उनके लिए ये दो पंक्तियां, देश की मिट्टी माथे से लगा लेता हूँ मैं हर त्योहार, कुछ इस तरह मना लेता हूँ। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हमने बात की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की, स्वदेशीकरण की। और हमारे विशेषज्ञ इसके लिए थे कार्यक्रम में मेजर जनरल संजय मेस्टन, भारतीय थल सेना से आप हमारे बीच आए, हमारा मार्गदर्शन किया, बहुत रोचक जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। हमारे साथ रहे एयर कमोडोर डॉक्टर अश्मिंदर सिंह बहल, वायुसेना से आपने बहुत रोचक बातें हमें बताई। कमांडर विक्रमजीत सिंह नौसेना से आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों विशेषज्ञों का। और मैं यही कहना चाहूंगी अपने श्रोताओं से कि INS विक्रांत हो, तेजस हो, प्रचंड हो, अर्जुन टैंक हो, पिनाका रॉकेट या ब्रह्मोस, ये सिर्फ नाम नहीं, ये भारत का गर्व है। और इस गर्व को और बढ़ाने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करके। आज पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में हमारे तीनों विशेषज्ञों ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर
1: थैंक
0: आपका।
1: यू, थैंक यू
0: स्टूडियो में
1: सो
0: आने के लिए
1: मच,
0: बहुत
1: थैंक यू
0: बहुत
1: सो मच
0: धन्यवाद।
1: एंड जय हिंद।
0: इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रमोद कुमार वत्स, और कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और तुषार पराशर के साथ मैं नीलम मलकानिया इस कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार, जय हिंद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी है। आईसीसी विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले फाइनल टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से

0: Good evening, listeners, and welcome to this yet another information-packed edition of Market Mantra, the program in which we bring to you all the important economic news of the day. And besides news, today being Sunday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on mutual fund and related matters. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. To walk you through today's show, your very own anchors, Subodh Mishra and myself, Sarabjit Kaur.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-0481 और 2371-7106. श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता. आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: जी, बहुत धन्यवाद.
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर.
0: ओपेक प्लस अनाउंसेस ऑयल आउटपुट हाइक ऑफ 1,88,000 बैरल्स पर डे फ्रॉम अगस्त. इन बुलियन मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस लॉग वीकली गेन्स एंड एफपीआईज रिवर्स ट्रेंड इन जून विद नेट इनफ्लो ऑफ ओवर 4,600 करोड़ रुपीस अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स.
1: ओपेक प्लस ने अगस्त

0: से कच्चे तेल के दैनिक उत्पादन में 1,88,000 बैरल्स की वृद्धि करने की घोषणा की। सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में साप्ताहिक बढ़त और FPIs ने जून में रुख पलटा। भारतीय पूंजी बाजार में 4,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश।
1: And before we go just any further in the program, may we once again remind our dear listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And Subodh, let's look at the first big story of the day. The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC Plus, has agreed to increase oil production by 188,000 barrels per day from August this year, following a virtual meeting to review global oil market conditions. In a statement released after a meeting today, the seven OPEC Plus member countries comprising Saudi Arabia, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria and Oman said the decision is aimed at supporting market stability. They also reaffirmed their commitment to a cautious and flexible approach with the option to increase, pause or reverse production adjustments depending on market conditions. The oil producing group said it will continue to monitor the global oil market and ensure compliance with agreed production targets. The next meeting of the participating countries is scheduled for the 2nd of August.
0: हम एक बार फिर से श्रोताओं को याद दिला दें कि आज हम म्यूचुअल फंड्स पर चर्चा करेंगे। हम रविवार के हर रविवार की तरह जैसे हम आपके सवालों के जवाब देते हैं और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष गुप्ता। और अगर श्रोताओं के पास कोई सवाल है तो आप 2331-4444 2371-0481 और 2371-7106 पर फोन कर सकते हैं अपने सवाल पूछने के लिए म्यूचुअल फंड्स पर। और अगली खबर पर चलते हैं सरबजीत। हम पीएनजी पर जो कुछ पाबंदियां लगाई थी सरकार ने अभी पिछले दिनों, जो संकट था पश्चिम एशिया का उसको देखते हुए, वो हटा ली गई हैं। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से फिर से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जल डमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। आशुतोष, अभी दो खबरें जो एक कवि सरबजीत ने पढ़ी हैं और दूसरी ये है, वो ओपेक प्लस ने कहा है कि हम अब रोज उत्पादन बढ़ा रहे हैं डेली का अपना, और पीएनजी पर जो हमारे यहाँ पाबंदियां लगी थी वो भी हटा ली गई है। अब कुल मिलाकर लग रहा है कि जिस तरह का संकट, जिस तरह के संकट के बादल छा रहे थे वो कुछ हद तक छट गए हैं। थोड़ा आश्वस्त महसूस कर रहे हैं, क्या बाजार भी लगेगा आश्वस्त जो हम महसूस कर रहे हैं बाजार पर भी दिखाई देगा?
2: जी बिल्कुल, जो पिछले एक दो हफ्ते की डेवलपमेंट्स हैं वो एक राहत का माहौल है और वो ही देखा गया है कि किस तरह इक्विटी मार्केट्स ने भी रिएक्ट किया है इस इन इन न्यूज़ को लेके। अच्छा खासा एक जंप एक शॉर्ट पीरियड में इस दौरान मार्केट्स ने देखा गया है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टर्स इन सारी डेवलपमेंट्स को देखते हुए एक मेरे ख्याल एक सीख छुपी है सारे इन्वेस्टर्स के लिए कि मैं काफ़ी सारे ऐसे निवेशकों को जानता हूँ जिन्होंने ये लगभग तय कर लिया था कि ये तो लड़ाई लंबी चलने वाली है और मार्केट्स में तनाव का माहौल बना रहेगा, मार्केट्स और नीचे जाएंगी, और काफ़ी पैसा उन्होंने मार्केट से विड्रॉ किया। और उसके बाद अचानक मार्केट में ये पलटफेर आया पिछले एक डेढ़ हफ्ते में, और जो एक 4-5% का गेन एक जो काफ़ी लंप में मार्केट में देखा गया है, तो उन्होंने लॉस में पार्टिसिपेट किया, गेन से वो वंचित रह गए। तो उनके

0: पोर्टफोलियोज में ये बढ़त नहीं दिखती है जो कि मार्केट में दिख रही है. तो इन्वेस्टर्स के लिए काफी जरूरी है कि ये माहौल, ये न्यूज ड्रिवन मार्केट है, तो कुछ कुछ न्यूज आती रहेगी, हो सकता है संधि होगी, यूएस ईरान के बीच में संधि ना हो पाए. आपको अपने गोल्स, अपने सर्कमस्टांसेस पर फोकस करके निवेश का निर्णय लेने हैं, ना कि यूएस ईरान में क्या चल रहा है उस पर. तो इस बात का जरूर ध्यान रखें. और मार्केट्स में थोड़ी राहत का माहौल है, उससे प्रोत्साहन प्राप्त करें.
1: ऑलराइट, सो एट एज यू नो सुबोध, यू नो ही रेज्ड होप्स.

0: तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, और मार्केट्स में थोड़ी राहत का माहौल है, उससे प्रोत्साहन प्राप्त करें।
1: All right. So as you know, Subodh, he raised hopes. He said that the clouds are looking just better now, a little bright and blue. And you spoke about categories of funds. So all said and done, let's just revise our basics of investing in mutual funds. When it comes to choosing the category of fund, how important is the criteria of investment goals, risk appetite? What do you have to say to our listeners on this?
0: Very important. In fact, more important than choosing the right fund, people often spend a lot of time thinking about picking the best mutual fund. But even before that, there is no definition of a best mutual fund. Nobody knows which is going to be the best. Often people mistake best mutual fund with the top performing mutual fund. They want to be in the fund which will give best returns in the next 1 year.
1: Correct.
0: And that is a wrong pursuit, in my opinion. The definition of best fund starts from what is the most suitable investment fund for you. And as you rightly said, that one has to focus on one's risk appetite, one's investment objectives, one's time horizon, and accordingly pick the right one. If you have at least 5-7 years or more of investment horizon, you can look at flexicap funds, value-oriented funds, all the mainstream diversified equity funds. They can be suitable. If you have 3 to 5 years of investment horizon, look at hybrid funds. You have funds like balance advantage funds, which optimize, which give you a fair mix of equity and debt, and those could be your choice. Anything below 3 years, you have to have, you have to play caution. You don't have to maximize returns and focus more on debt-oriented investment products. So broadly, that is the main thumb rule that should guide anybody's asset allocation.
1: We'll come back to you on that, Ashutosh. Meanwhile, let's connect with our first caller from Jaipur. Jitender ji, swagat hai. Sawal puchhe.
2: हाँ सर, ये जैसे काफी दिन से मार्केट डाउन हुआ, अभी थोड़ा सा उठा है, तो हम आपसे एक दो प्रश्न है। एक तो कौन सा सेक्टर सस्ता है सेक्टोरियल फंड में, ठीक है, कौन सा सेक्टर सस्ता? आईटी तो है ही है, तो और एक दूसरा कौन सा है? और दूसरा सर कि वो एक क्लीन एनर्जी फंड आया था मोतीलाल ओसवाल में, क्लीन एनर्जी, तो किस टाइप का फंड है उसको, मतलब उसमें कौन सा किस टाइप का स्टॉक रहेगा क्लीन एनर्जी?
0: देखिए, पहला आपने बोला कि कौन से सेक्टर में, मेरे लिहाज में आप एक एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, आप यही एक निर्णय है जो कि आप एक एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो आप इस बात की इतनी बहुत चिंता ना करें कि कौन सा सेक्टर सस्ता है। आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करिए। एक अगर आपका अच्छा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, तो ये निर्णय फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए। उनका दैट इज देयर डे जॉब, वो यही उनका काम है। तो आप अगर सेक्टर्स का चुनाव करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जो फंड मैनेजर का काम है, आधा काम फंड मैनेजर का आप अपने जिम्मे ले रहे हैं, तो उससे बचिए। आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स जिन्होंने मार्केट के उतार चढ़ाव के अलग अलग टाइम पीरियड्स में अच्छे रिटर्न देने का जिनका अनुभव है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उस टाइप के फंड में इन्वेस्ट करिए, और बाकी डिसीजंस आप फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए। क्लीन एनर्जी, देखिए आजकल काफ़ी जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए ये माना जा रहा है कि क्लीन एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, सोलर, विंड, इस टाइप के जो एनर्जी सोर्सेज हैं, उनके लिए माना जाता है कि उनका भविष्य उज्ज्वल है। तो ये जितने भी क्लीन एनर्जी थीम पे निर्धारित इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो इस टाइप के एवेन्यूज में देखते हैं कि कौन सी कंपनीज हैं जो कि सोलर, विंड, रिन्यूएबल, इस टाइप के एनर्जी सोर्सेज से बेनिफिट प्राप्त कर सकती हैं, और वो उनमें निवेश करते हैं।
3: जी आशुतोष, आपने अभी जैसा बताया कि सेक्टर्स पर गौर ना करें आप ज़्यादा, ये आप फंड मैनेजर पर छोड़ दें, लेकिन हर छोटे बड़े हर निवेशक के मन में ये सवाल रहता है कि भाई जब म्यूचुअल फंड कंपनियां जो हैं वो सेक्टोरल फंड्स बना रही हैं, तो नेचुरली जिज्ञासा रहती है लोगों की, अच्छा हम इसको भी एक्सप्लोर करके देखते हैं भाई, तो आखिर ऐसे फंड्स हैं तो लोग उन पर जाएंगे भी, किनको बचना चाहिए और किनको उन पे जाना चाहिए, लेकिन इस पर चलिए हम आगे बात करेंगे। अभी सोनीपत से दीपक दहिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक जी स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: जी सर, नमस्कार सर।
3: नमस्कार।

0: सर मुझे इसके बारे में पूछना है, सेबी का कोई नया फंड आया था SIF करके, और दूसरा एक क्वेश्चन है जीरोधा का एक लाइफ साइकिल फंड आया है 2041, दोनों के बारे में बता दीजिए सर, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे क्या होगा, ये क्या प्लान है इनका।
1: जी जी, SIF जो आपने कहा ये एक नए टाइप के फंड्स हैं, आप ये मानिए कि ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस PMS और म्यूचुअल फंड के बीच में है। 10 लाख का इनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है और ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स नहीं यूज़ करते हैं। ये फ्यूचर्स में ज़्यादा एक्सपोजर्स ले सकते हैं, शॉर्ट पोर्टफोलियो शॉर्ट पोजिशंस भी ले सकते हैं, जो कि कुछ ऐसी हाई रिस्क स्ट्रेटजीज ये लोग यूज़ कर सकते हैं जो म्यूचुअल फंड्स के लिए निषेध हैं बाय रेगुलेशन। हाई मिनिमम टिकट साइज इनका काफ़ी हाई है, इनको माना जाता है कि उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो इस टाइप के थोड़े ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स को समझते हैं, उनके रिस्क को समझते हैं और उस रिस्क के लिए उनमें एपिटाइट है। तो SIF को कुल मिलाकर मैं कहूँगा बहुत नए प्रोडक्ट हैं, इनको थोड़ा समय दीजिए। कुछ ये नोवेल्टी अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने में सक्षम है कि नहीं है, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर क्या ये कुछ ऐसी आपकी निवेश की ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम है जो कि एक साधारण लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड से पूरी नहीं होती है, ये अभी ओपन क्वेश्चंस हैं, इनका कोई बहुत डेफिनेटिव आंसर नहीं है। इन फंड्स को थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड करने दीजिए, इनमें निवेश करने की जल्दी में न रहें, कुछ ऐसा आपका नुकसान नहीं हो रहा है, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है जो आपके हाथ से निकल जाएगी, तो बिल्कुल कोई फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसे फोमो कहते हैं उसमें पढ़कर इनमें इन्वेस्ट ना करें, इनको अपने आप को प्रूफ करने दीजिए उसके बाद निर्णय लीजिए। दूसरा आपने पूछा लाइफ साइकिल फंड, जी ये भी एक नए प्रकार के फंड्स हैं। जीरोधा ने पहला फंड अभी लॉन्च किया है, NFO पीरियड शेयर उसका अभी ऑन है। ये फंड्स ऐसे फंड्स हैं जो कि अगर आपका मानिए 30 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो शुरू में ज़्यादा इक्विटी में एलोकेट करेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे टारगेट डेट पास आती जाएगी, जैसे जैसे निवेश के इनके इन फंड्स की अवधि समाप्त होती जाएगी, वैसे वैसे ये इक्विटी से थोड़ा सेफ डेट में ऑटोमेटिकली आपका पैसा मूव करते जाएंगे। तो ये काफ़ी हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का तरीका है कि जिसमें आपको एसेट रीबैलेंसिंग अपने पोर्टफोलियो की नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली वो फंड हाई रिस्क से थोड़ा मॉडरेट रिस्क एंड लो रिस्क की तरफ बढ़ता चलेगा जैसे जैसे उसका टाइम पीरियड कम होता जाएगा। अगेन मैं यही कहूँगा कि नए टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, अभी तो पहला प्रोडक्ट आया है, ये किस तरह निवेश करते हैं, क्या ये आपको अच्छा एक्सपोजर और ओवरऑल टाइम पीरियड में अच्छे रिटर्न देने में सक्षम हो पाते हैं कि नहीं, इनका खर्चा कैसा होता है। हाइब्रिड्स में देखिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उनमें कुछ कॉम्पोनेंट डेट होता है, कुछ इक्विटी होता है, एक मिश्रित ये प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन काफ़ी तौर पर देखा गया है कि इनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा इक्विटी के नज़दीक होता है, इक्विटी के बराबर होता है, तो उस सेंस में ये थोड़ी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन बन सकते हैं। हाँ, टैक्स में ज़रूर ये टैक्स बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि रीबैलेंसिंग आपके लिए टैक्स फ्री हो जाती है, फंड करता है, आपको नहीं करनी होती। तो कुछ इनके एडवांटेजेस हैं, कुछ शायद इनके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, समय दीजिए इनको, इनको अपने आप को प्रूव करने दीजिए।
2: ऑल राइट, लेट्स आस्क आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली, केशव जी अपना सवाल पूछें। जी
3: तो वहाँ हमारे को एक सजेशन देते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं एजेंट के द्वारा, तो हमें क्या सावधानी बरतनी है कि जो एजेंट हमसे जो फंड बताएगा वो किस ढंग के तरीके से हम समझे कि ये सही हमें रास्ता दिखा रहा है, क्योंकि हमारी एफडी है और एफडी 2 महीने बाद मैच्योर हो जाएगी, तो सही सिचुएशन क्या है कि आपको ये एफडी के बराबर कोई म्यूचुअल फंड है।
1: जी जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं थी, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ आपका शायद कुछ एफडी में निवेश है जो आप म्यूचुअल फंड में करना चाह रहे हैं, और आप ये जानना चाहते हैं कि जो आपको सलाह दे रहे हैं कुछ म्यूचुअल फंड में जाने की, वो कैसे आप पता करें कि वो सलाह सही है कि नहीं। तो देखिए दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला तो आपको यूलिप से बचना है, काफ़ी बार ये देखा गया है कि जब आप कोई किसी बैंक के थ्रू किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू निवेश करने जाते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड बताकर यूलिप बेच दी जाती है। पहला ध्यान आपको ये रखना है कि आपको यूलिप ना बेची जाए। अगर किसी भी निवेश प्रोडक्ट में आपको ये बताया जाता है कि उसमें कुछ इंश्योरेंस भी आपको साथ में मिलेगा तो आप समझ जाइए कि एक निवेश के साथ अगर इंश्योरेंस मिश्रित है तो एक यूलिप प्रोडक्ट है, आप उनसे बचें, पहला तो ये। दूसरा ये कि आप नए इन्वेस्टर हैं, मेरी राय में किसी भी नए इन्वेस्टर को आप सारा अपना पैसा जितना भी आपका एफडी में है उसको एक साथ म्यूचुअल फंड में ना लगाएं। आप एक छोटी रकम म्यूचुअल फंड्स में, आप मात्र 500 रुपये, 1000

0: रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप एक बहुत छोटी रकम म्यूचुअल फंड में लगाएं, 2-3 महीने उसमें निवेशित रहें, फिर उसको रिडीम करिए, पैसा वापस आपके बैंक अकाउंट में आएगा। आप ये फुल साइकिल करके देखिए, आपको फर्स्ट हैंड थोड़ी जानकारी प्राप्त होगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड किस तरह काम करता है। उसके बाद थोड़े बड़ी मात्रा में, थोड़े बड़े अमाउंट का निवेश प्लान करें। और शुरुआती निवेशकों के लिए अगर आपके पास लंबा टाइम होराइजन है, तो मेरा ख्याल एक निफ्टी 50 बेस्ड इंडेक्स फंड आपके लिए अच्छा विकल्प रहेगा। उसमें सारे ही फंड लगभग एक जैसे होते हैं, फंड का चुनाव करना बहुत आसान होता है। किसी भी निफ्टी 50 फंड में एक छोटी रकम से शुरुआत करिए, उसमें कुछ 2-4 महीने बने रहिए, उसको देखिए, उसको ट्रैक करिए, और उसमें से पैसा रिडीम भी करिए। जब आप ये फुल साइकिल कर लेंगे, अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा बड़ा निवेश करने के लिए।
1: जी, और हम लौटे अपने सवाल पर कि सेक्टर्स हैं तो क्यों ना हम उनको भी एक्सप्लोर करें।
0: जी, तो देखिए, मेरी राय में आम तौर पर ज़्यादातर निवेशकों को सेक्टर फंड से बचना चाहिए, क्योंकि आप जो भी सेक्टर लेंगे, आपको पहले ये देखना होगा कि क्या वो सेक्टर का आपका अपना एक्सपोजर उस सेक्टर में आपके डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से कितना है। अब जैसे बैंकिंग फंड की आप बात करते हैं, तो बैंकिंग फंड के बहुत सारे सेक्टर फंड्स आपको मिल जाएंगे, इंडेक्स फंड्स भी बैंकिंग के आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप अपना आम तौर पर किसी भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड का पोर्टफोलियो देखेंगे, तो 25-30% या उससे भी ज़्यादा मात्रा में उनका पैसा बैंकिंग स्टॉक्स में ऑलरेडी लगा होता है। तो अगर आप ये नॉलेज के साथ किसी सेक्टर फंड का चुनाव नहीं करेंगे, तो आप बहुत ओवर एक्सपोजर शायद ले लेंगे किसी भी सेक्टर में। तो पहली बात तो ये कि म्यूचुअल फंड्स बनाए ही निवेशकों के लिए एक बहुत ही आसान, सुगम, हैंड्स फ्री एक्सपोजर के लिए गए थे। अगर आपको फिर भी किसी सेक्टर पे कोई खास कन्विक्शन है, कुछ खास जानकारी है जिसके बलबूते पर आप उस सेक्टर में थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर लेना ही चाहते हैं, तो 5-7%, 10%, उससे ज्यादा मेरे राय में आपको सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए।
1: जी,
2: एंड लेट्स हियर व्हाट आवर नेक्स्ट कॉलर वांट्स टू आस्क। मिस्टर रामाकांत, प्लीज पोज योर क्वेश्चन। रामाकांत जी, सवाल पूछें।
3: जी नमस्कार, मैं कोलकाता से रामाकांत सिंह बोल रहा हूँ।
2: जी,
3: मैंने लास्ट 5-6 महीने में थोड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू किया है एमएस में। ये हमको कितने दिन तक चलाना चाहिए और इसे रिलेटेड इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है, थोड़ा कुछ जानकारी दें प्लीज।
0: जी, तो पहला सवाल, कितने दिन तक? देखिए, म्यूचुअल फंड्स कि कोई निश्चित अवधि के प्रोडक्ट्स नहीं है। आप जब तक इसमें निवेशित रहना चाहते हैं, आप रह सकते हैं, आपके पास फुल लिक्विडिटी होती है, आप जब भी पैसा निकालना चाहें आप निकाल भी सकते हैं। तो ये एफडी की तरह कोई फिक्स्ड टेन्योर वाले फंड्स नहीं होते हैं, आपकी मर्जी है, ये आप पे निर्धारित करता है कि आपको कब पैसे की ज़रूरत है, आप तब इसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका लंबे समय का निवेश है, आपने इक्विटी में एक वेल्थ क्रिएशन के लिए, अपने पैसे की बढ़ोतरी के लिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है, तो इसमें बने रहिए। कम से कम इक्विटी फंड्स के निवेश को 5-7 साल आपको कम से कम देने होते हैं, जिससे कि उसका कुछ बेनिफिट आपको प्राप्त हो पाए। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक पेड़ लगाने की तरह है, जिसमें आपको कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, नहीं सालों में आपको उसका फल प्राप्त होता है। तो आप इसमें बने रहिए, और इसकी एनएवी जो आपको मिली होगी उसकी ग्रोथ होती है। आप अगर उसकी एनएवी ट्रैक कर रहे हैं, तो आप देखेंगे जैसे जैसे एनएवी बढ़ेगी वो आपका गेन है। तो जब आप बेचेंगे, बड़ी हुई एनएवी पे बेचेंगे, तो जो प्रॉफिट होगा वो आपका गेन है म्यूचुअल फंड से।
1: जी, अगले कॉलर है भोपाल से, शंकर, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
4: नमस्ते सर।
1: नमस्कार।
4: मेरा अभी इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा मैंने शुरू किया है डेट फंड में, शॉर्ट टर्म डेट फंड में, आईसीआईसीआई के, तो उनमें इतना अच्छा रिटर्न नहीं है। क्या आर्बिट्राज फंड कंसिडर किया जाए, या डेट फंड के रिटर्न इतने कम क्यों हुए हैं रिसेंट टाइम्स? बिकॉज एफडी में तो वी हैव टू पे टैक्स और टीडीएस वगैरह एवरी ईयर, एंड डेट फंड में वी आर नॉट सपोज टू पे एनी टैक्स अनलेस वी रिडीम। सो दूसरा सवाल है, इफ वी मर्ज टू फ्लेक्सी कैप स्कीम और सिमिलर इक्विटी स्कीम, तो क्या एक मर्ज मतलब एक से निकल के दूसरे में जाए तो क्या रिडेम्पशन माना जाएगा, या ऐसा कोई टूल अवेलेबल है जिसमें हमें टैक्स ना लगे, हम दो फंड को एक मर्ज कर दे एक ही फंड में, एक ही फंड है उसके, एंड इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज रिडेम्पशन, और देयर इज नो सच स्कीम एंड वी हैव टू गो वाया रिडेम्पशन स्कीम। थैंक यू।
0: Sure. पहला सवाल आपका शॉर्ट टर्म फंड को लेकर, देखिए हाल फिलहाल में जैसे ये ग्लोबल सिचुएशन जो रहा है, वॉर का सिचुएशन रहा है, तो यील्ड्स बॉन्ड मार्केट में बढ़ी हैं। जब भी यील्ड बढ़ती हैं तो बॉन्ड फंड्स के रिटर्न गिरते हैं, बॉन्ड्स के रिटर्न गिरते हैं, और उसी लाइन पर बॉन्ड फंड्स के रिटर्न भी गिरते हैं। तो कुछ हाल फिलहाल के 2-3 महीने बॉन्ड फंड्स के लिए मुश्किल रहे हैं, और वही उनके रिटर्न्स में भी रिफ्लेक्ट

0: होता है। फंड का चुनाव आपका अच्छा है, आप बने रह सकते हैं इस फंड में, और आपका एनीवेज शॉर्ट ड्यूरेशन फंड से रिटर्न एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि वो एफडी के आसपास या एफडी से शायद थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न दे पाए। तो उससे ज़्यादा रिटर्न अगर आप उम्मीद रखते हैं तो शायद आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना होगा। उतने रिटर्न देने में फंड सक्षम है। हाँ, पिछले 2-3 महीने डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जैसे माहौल बदलेगा तो इनके रिटर्न्स भी बेटर हो सकते हैं। आर्बिट्राज फंड्स आपने कहा, देखिए वही 5-6% रिटर्न की अगर आपकी अभिलाषा है तो आर्बिट्राज फंड्स आपको मेरा ख्याल निराश नहीं करेंगे। डेट फंड से थोड़े से ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन उनका बिगेस्ट एडवांटेज है टैक्स एडवांटेज। डेट फंड्स आपकी स्लैब रेट पर, अगर आप 30% ब्रैकेट में हैं तो आपको उतना टैक्स देना पड़ जाता है, पोस्ट टैक्स रिटर्न काफ़ी कम हो जाता है। आर्बिट्राज फंड्स वहीं इक्विटी के तरह ट्रैक्सेबल होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%, तो वो पोस्ट टैक्स रिटर्न आर्बिट्राज फंड्स का थोड़ा बढ़ जाता है। तो बिल्कुल आप उस लिहाज से देख सकते हैं, लेकिन रिटर्न एक्सपेक्टेशन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप 6% के दायरे में आसपास अगर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन है आप, तो आर्बिट्राज फंड्स को देख सकते हैं। इक्विटी से फिर आपने तीसरा सवाल पूछा, स्विच आप करना चाहते हैं दूसरे फंड में, तो देखिए टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। आप अगर सेम फंड हाउस के भी दूसरे फंड में आप मूव करते हैं, यहाँ आप सेम फंड के रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में मूव करते हैं तो भी उसे रिडम्पशन एंड बाय ट्रीट किया जाता है और उस पर टैक्स लगेगा। तो देखिए ऐसा कोई भी तिलिस्म नहीं है जिससे आप उससे बच पाएं। तो सोच समझ कर, आपका इन्वेस्टर के लिए लेसन यही है कि आप सोच समझ कर अपने रिडम्पशंस प्लान करें, बहुत रेकलेसली एक फंड से दूसरे में जल्दी जल्दी चर्न ना करें।
1: और अमित जी जुड़ चुके हैं मुंबई से, सवाल पूछें।
2: थैंक यू सर। सर दो सवाल थे कि मल्टी एसेट फंड और मल्टी कैप फंड में क्या फर्क है, और लिक्विड फंड और ओवरनाइट में क्या डिफरेंस हो, ये जानना था। मैं फोन पे आपका आंसर सुनूंगा, थैंक यू
0: जी। योर फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टी कैप और मल्टी एसेट, फर्क ये है कि मल्टी एसेट फंड्स एक हाइब्रिड कैटेगरी के फंड हैं, इनमें इनके मैंडेट में इन्हें कम से कम 3 एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना होता है। टिपिकली इन फंड्स में देखा गया है कि इक्विटी, डेट और गोल्ड या सिल्वर, और कुछ फंड्स थोड़ा सा रीट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारी एसेट क्लासेस का कॉम्बिनेशन आपको मल्टी एसेट फंड्स में मिलता है। अब इस कैटेगरी के अलग अलग फंड्स काफ़ी अलग अलग तरीके से मैनेज होते हैं, तो ये बहुत कंपेरेबल एक दूसरे से शायद नहीं होते। कोई इक्विटी में बहुत ज़्यादा रखता है, कोई इक्विटी में बहुत कम रखता है, तो डिफरेंट फंड्स कैन हैव अ वेरी डिफरेंट एसेट एलोकेशन दैट दे फॉलो, बट द ब्रॉड प्रिमाइस इज एज पर द रेगुलेटरी मैंडेट दे हैव टू इन्वेस्ट एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इन एटलीस्ट 3 एसेट क्लासेस, सो दैट इज मल्टी एसेट फॉर यू। मल्टी कैप फंड्स आर प्योर इक्विटी फंड्स विच इन्वेस्ट अक्रॉस लार्ज, मिड एंड स्मॉल, एंड ईच ऑफ दीज 3 मार्केट कैप सेगमेंट्स शुड हैव एटलीस्ट 25% ईच। सो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन मल्टी कैप एंड मल्टी एसेट।
3: जी अगले कॉलर है दिल्ली से, राजीव स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: मार्केट मंत्रा जी, जैसे मेरे को SIP करनी है तो मैं PSU इक्विटी फंड मेरे लिए ठीक रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, कि स्मॉल कैप जिसमें अच्छा रिटर्न मिल सके?
0: देखिए अगर आप शुरुआती निवेशक हैं, फर्स्ट टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा दोनों से ही बचें, PSU और स्मॉल कैप। आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, कोई फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड का चुनाव करें और उससे शुरुआत करें, क्योंकि बाकी दोनों काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड हाई रिस्क हो सकते हैं। तो शुरुआती इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इन कैटेगरीज में से कोई एक या दो फंड्स का चुनाव करें और उसमें अपना SIP शुरू करें।
1: और BT पाठक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ पुणे से, सवाल पूछें।
5: हाँ, गुड इवनिंग मैम।
1: गुड इवनिंग।
5: मेरा सवाल ये है कि अभी जो आपने बात की थी कि यूलिप में ना करे, यूलिप लिंक्ड जो इंश्योरेंस बेस्ड पॉलिसी रहता है इन्वेस्टमेंट, और जो रेगुलर म्यूचुअल फंड, और यूलिप में बताया जाता है कि उसमें टैक्स फ्री इनकम रहता है और एडिशनल उसमें इंश्योरेंस भी रहता है, तो कौन सा बेनिफिशियल है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे या यूलिप लिंक्ड जो रहता है प्लान उसमें इन्वेस्ट करे?
0: देखिए मेरी राय में, जैसे मैंने पहले कहा था, आप यूलिप से बचें। यूलिप्स एक क्योंकि वो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करते हैं, तो नेट रिजल्ट ये होता है कि ना आपको इंश्योरेंस पर्याप्त मात्रा में मिल पाती है और ना ही आपकी इन्वेस्टमेंट एक एफिशिएंट तरीके से काम करती है। थोड़े डिस्ट्रीब्यूशन के कमीशन उनमें ज़्यादा होते हैं, शुरू के ही 1-2 साल में काफ़ी कमीशन में आपका पैसा कट जाता है, तो कंपाउंड करने के लिए, ग्रो करने के लिए जितना पैसा बचता है तो आपको शुरू में ही जो सेटबैक लगता है, योर रिटर्न्स आर ऑलवेज कैचिंग अप। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स के लिए यही रहती है कि अपने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखें, अपनी इंश्योरेंस नीड के लिए एक सस्ता साधारण टर्म प्लान लें जिसमें आपको पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में

0: समय शोर्ड लीजिए और कम प्रीमियम में, और बचा हुआ पैसा अपना म्यूचुअल फंड्स या बाकी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में निवेश करें
1: जी। और कीमती धातुओं के बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मई के बाद पहली बार साप्ताहिक बढ़त देखी गई। एमसीएक्स में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 2.2% की बढ़त हुई और ये 1,47,378 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 6.2% बढ़कर 2,37,410 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। और एफपीआई का हाल ये रहा कि जुलाई के 3 शुरुआती कारोबारी सत्रों में लीवाली का रुख बनाए रखा एफपीआई ने, और इस महीने अब तक उन्होंने 708 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर खरीदे हैं। जून में उन्होंने भारतीय शेयर बाजार से 49,340 करोड़ रुपए निकाले थे, लेकिन अब ये रुख उलटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय ऋण बाजार में एफपीआई ने पिछले महीने काफी दिलचस्पी दिखाई थी। जनरल लिमिट के तहत उन्होंने 30,620 करोड़ रुपए, एफएआर के जरिए 21,652 करोड़ रुपए और वीआरआर के तहत 3,246 करोड़ रुपए का निवेश किया। और आशुतोष, आज वक्त इतना ही है सवालों के जवाब देने के लिए और बहुत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: लिसनर्स, बिफोर वी रैप अप टुडेज शो, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। ओपेक प्लस अनाउंसेस ऑयल आउटपुट हाइक ऑफ 1,88,000 बैरल्स पर डे फ्रॉम अगस्त। इन बुलियन मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस लॉग वीकली गेन्स एंड एफपीआईज रिवर्स ट्रेंड इन जून विद नेट इनफ्लो ऑफ ओवर 4,600 करोड़ रुपीज अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स। एंड दैट्स ऑल इन टुडेज एडिशन ऑफ मार्केट मंत्र। सी यू टुमारो, अंटिल देन गुड बाय।
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.
5: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷவாணியின் சென்னை எஃப்எம் கோல்டு 100.1.
6: எஃப்எம் கோல்டில் இப்போது கேட்கலாம் திரை கானம். அடிமை பெண் திரைப்படத்துக்காக எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் பி சுசீலா பாடிய பாடல்.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस दौरान श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री

0: मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जल संबंधों की समीक्षा की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। कल हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत ने यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया है। पाकिस्तानी रेंजर्स के प्रदर्शनकारियों पर कथित तौर पर गोलीबारी के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तनाव बढ़ गया है। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह घटना बुनियादी अधिकारों, आर्थिक राहत और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शनों पर जारी दमनकारी कार्रवाई के बीच हुई है। पाकिस्तान में कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में भी विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं, जहां जूनियर डॉक्टर लंबित वेतन, बेहतर सुरक्षा और अस्पताल की सुविधाओं में सुधार की मांग कर रहे हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, गोवा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और राहत तथा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning and gusty winds. The India Meteorological Department has said conditions are favorable for its further advance into some parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan during the next 4 days. Heavy to very heavy rainfall is predicted over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day. While scattered rainfall is expected in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Chandigarh during the next 2 to 3 days. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state, triggering rescue operations and rain-related incidents yesterday. The weather office has forecast heavy to very heavy rainfall at many places, with extremely heavy rainfall likely at isolated locations over the next 24 hours. Authorities have advised people to remain alert and avoid venturing into vulnerable areas as the heavy rain is expected to continue. In Gujarat, IMD has forecast heavy rainfall over the next 7 days. A red alert for extremely heavy rainfall today has been issued for Dang, Navsari, Valsad, Bhavnagar, Amreli, Gir Somnath and Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli for today. Fishermen have been advised not to venture into the sea for the next 5 days. Meanwhile, Delhi NCR witnessed a sudden change in weather yesterday with moderate rainfall lashing several parts of the region, bringing much-needed relief from the humid weather. Union Minister Jyotiraditya Sindhya and Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav yesterday laid the foundation stone of a defence manufacturing plant in Shivpuri. The plant will be built by the Adani Group with an investment of around 2,500 crore rupees. Speaking on the occasion, Union Minister Sindhya said that a new chapter is being written in Shivpuri's history. Not only missile propellant, but also explosives, missile assembly and some of the world's most advanced weapons will be manufactured in Shivpuri. This is the largest investment by a private sector company in South Asia. Mr. Sindhya said that the project will connect the district to industrial development, defense production and the vision of a self-reliant India. Prime Minister Narendra Modi will embark on a state visit to Indonesia from today till the 8th of this month. This will be Prime Minister Modi's fourth visit to Indonesia. The Prime Minister will hold bilateral discussions with President Prabowo Subianto, reviewing progress across key areas of

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस दौरान श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। असम मंत्रिमंडल ने विधानसभा के आज से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले आज आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और शासन व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को मंजूरी दी। मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले कई विधेयकों को मंजूरी दी है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में दो अलग अलग अभियानों में कोडीन आधारित एक कफ सिरप की 1,00,000 से अधिक शीशियां जब्त की हैं। DRI ने अगरतला में रेलवे सुरक्षा बल और असम राइफल्स की सहायता से अभियान चलाकर 55,000 से अधिक शीशियों की खेप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एक अन्य अभियान में अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के डंकुनी स्थित एक गोदाम की तलाशी में कोडीन आधारित कफ सिरप की 56,000 से

0: अधिक शीशियां बरामद की। भारतीय नौसेना का नौकायन प्रशिक्षण पोत आईएनएस सुदर्शनी अमेरिका के न्यूयॉर्क बंदरगाह पर पहुंच गया है। यह पोत यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल नेवल रिव्यू 250 और सेल फोर्थ 250 समारोहों में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। हडसन नदी पर आयोजित परेड ऑफ सेल के दौरान 3 मस्तूलों वाले इस प्रतिष्ठित पोत ने गर्व से भारतीय तिरंगा फहराया। आईएनएस सुदर्शनी की यह यात्रा 10 महीने के ट्रांसोनिक अभियान लोकायन 2026 का हिस्सा है। यह समुद्री सहयोग को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का निर्माण करने और सहयोगी नौसेनाओं के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, गोवा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और राहत तथा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning and gusty winds. The Indian Meteorological Department has said conditions are favorable for its further advance into some more parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan during next 4 days. Heavy to very heavy rainfall is predicted over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day, while scattered rainfall is expected in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Chandigarh during next 2 to 3 days. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state yesterday, triggering rescue operations and rain-related incidents. The weather office has forecast heavy to very heavy rainfall at many places, with extremely heavy rainfall likely at isolated locations over the next 24 hours. Authorities have advised people to remain alert and avoid venturing into vulnerable areas as the heavy rain is expected to continue. In Gujarat, IMD has forecast heavy rainfall over next 7 days. A red alert for extremely heavy rainfall today has been issued for Dang, Navsari, Valsad, Bhavnagar, Amreli, Gir Somnath, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli today. Fishermen have been advised not to venture into the sea for the next 5 days. Meanwhile, Delhi NCR witnessed a sudden change in weather yesterday, with moderate rainfall lashing several parts of the region, bringing much-needed relief from the humid weather. Union Minister Jyotiraditya Scindia and Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav yesterday laid the foundation stone of a defence manufacturing plant in Shivpuri. The plant will be built by the Adani Group with an investment of around 2,500 crore rupees. Speaking on the occasion, Union Minister Scindia said a new chapter is being written in Shivpuri's history yesterday.
2: Not only missile propellant, but also explosives, missile assembly and some of the world's most advanced weapons will be manufactured in Shivpuri. This is the largest investment by a private sector company in South Asia.
3: सबसे बड़ा निवेश निजी क्षेत्र की कोई कंपनी का है.
1: Mr. Scindia said the project will connect the district to industrial development, defense production and the vision of a self-reliant India. Prime Minister Narendra Modi will embark on a state visit to Indonesia from today till 8th of this month. This will be Prime Minister Modi's 4th visit to Indonesia. Prime Minister Modi will hold bilateral discussions with President Prabowo Subianto, reviewing progress across key areas of cooperation under the strategic partnership. In Jakarta, the Prime Minister is also scheduled to address a large gathering of the Indian diaspora. Coinciding with Prime Minister's visit,

0: நேர்களே, இந்த அலைவரிசை இன்னும் சில நொடியில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
3: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
1: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस दौरान श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में कल डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। कल हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत ने यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। कल रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इसी बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आज नुआन पहलगाम बेस कैंप का दौरा किया। कल रात मुंबई के मानखुर्द इलाके में भारी बारिश के बीच एक 3 मंजिला मकान गिरने से कम 6 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि एक व्यक्ति के मलबे में फंसे होने की आशंका है और उसे खोजने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF सहित कई एजेंसियां संयुक्त अभियान चला रही हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, गोवा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। राज्य के कई जिलों में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और राहत तथा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड के निर्धारित 151 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए। फोयबे लिचफील्ड ने 48 रन बनाए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: கவரிமான் திரைப்படத்திலிருந்து கேட்ட அந்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
3: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
1: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस दौरान श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। असम मंत्रिमंडल ने विधानसभा के आज से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले आज आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और शासन व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को मंजूरी दी। मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले कई विधेयकों को मंजूरी दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। मंत्रालय ने सभी लोगों से सोशल मीडिया पर इस तरह की फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कल रात मुंबई के मानखुर्द इलाके में भारी बारिश के बीच एक 3 मंजिला मकान गिरने से कम 6 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि एक व्यक्ति के मलबे में फंसे होने की आशंका है और उसे खोजने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF सहित कई एजेंसियां संयुक्त अभियान चला रही हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, गोवा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और राहत तथा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र के जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने लंदन के

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की

0: वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस दौरान श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। असम मंत्रिमंडल ने विधानसभा के आज से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले आज आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और शासन व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को मंजूरी दी। मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले कई विधेयकों को मंजूरी दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। कल हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत ने यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में ट्रस्ट को प्राप्त दान की गिनती की जांच कर रही विशेष जांच टीम SIT की रिपोर्ट सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। पहले यह बैठक आज दोपहर करीब 3 बजे मडराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब यह बैठक राम मंदिर परिसर में होगी। कल रात मुंबई के मानखुर्द इलाके में भारी बारिश के बीच एक 3 मंजिला मकान गिरने से कम 6 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि एक व्यक्ति के मलबे में फंसे होने की आशंका है और उसे खोजने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF सहित कई एजेंसियां संयुक्त अभियान चला रही हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, गोवा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और राहत तथा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर ICC महिला T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning and gusty winds. The

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में वे आज 3 दिन की यात्रा पर इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की 4थी यात्रा होगी। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के

वार्ता करेंगे और भागीदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। मंत्रालय ने बताया कि सहकार से समृद्धि लक्ष्य के अंतर्गत इस समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदाम का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टीसू कल्चर केंद्र का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस के तीसरे चरण की शुरुआत और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर को मिले धन की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार के लिए आज अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है। ट्रस्ट की बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। असम मंत्रिमंडल ने आज राज्य विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत से पहले आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दे दी है। गुवाहाटी में मंत्रिमंडल बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। संस्कृति मंत्रालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसकी घोषणा मंत्रालय ने पिछले वर्ष की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में देर रात भारी बारिश के बीच एक 3 मंजिला चौल के गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, गोवा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। विभाग ने आज मुंबई समेत कई राज्य के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।